क्वांटम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून सन 2026। सुबह के 5:57 और 10 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा

0: की पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोतो, अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे जिन्हें स्वर दिए थे सुरेश वाडेकर, चंदू आत्मा, हेमंती शुक्ला और साथियों ने। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:25 हुए हैं। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रतिज्ञा विषय पर चिंतन।
1: ऋषिराज नगर के बाहर उद्यान में पधारे थे। सारा जनसमूह उन्हें देखने उमड़ पड़ा। उसी समूह में एक था यमपाल, राजकीय बधशाला का बधिक, जो नित्य ही सिर को धड़ से अलग करके मनुष्यों को यमराज के यहाँ भेजा करता था। ऋषिराज उच्च शिला पर विराजमान थे। अहिंसा के उपदेश में वे कह रहे थे, मारने और मरने वाले का अंतर तो देखो। जहाँ पहले को तो क्षण भर का आनंद मिलता है, वहीं दूसरा हमेशा के लिए प्राणों से वियुक्त हो जाता है। उनके प्रत्येक शब्द में जादू सा प्रभाव था। पाषाण को भी पिघलाने वाले उपदेशों को सुन यमपाल का अंतर्मन रो उठा। अंत में किसी ने जिज्ञासा की, प्रभु जिससे हिंसा हो चुकी हो वो क्या करे? प्रायश्चित, ऋषि धीरता से बोले, क्योंकि वही मनुष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। तभी व्यथित यमपाल ने पूछा, और प्रभु जिसकी आजीविका का साधन ही हिंसा हो तो? उसके भोलेपन पर ऋषि मुस्कुराकर बोले, वत्स, हिंसा बुरी है। जब ये बात हमारा हृदय स्वीकार कर लेता है तो एक न एक दिन हिंसा स्वयं ही छूट जाती है। पर मैं बधिक हूं स्वामी, क्या करूं? यमपाल की वाणी में करुणा थी। ऋषि गंभीर वाणी में बोले, तुम अहिंसा के महत्व को समझो। माह या पक्ष में एक ही दिन सही अहिंसक बनने का अभ्यास करो और समयानुसार इसमें वृद्धि करते जाओ। संतुष्ट यमपाल ने प्रतिज्ञा ली, प्रत्येक चतुर्दशी को मैं अब प्राणीवध नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद चतुर्दशी का दिन आया, यमपाल के अहिंसक बनने का दिन। तभी राजकुमार को प्राणदंड की बात सारे शहर में अग्नि की तरह फैल गई। कुछ लोगों का मत था, राजा भी कैसा दुराग्रही है, साधारण से अपराध पर प्राणदंड। पर राजा का अभिमत था, मेरा पुत्र अनुशासन भंग करे, प्रजा के समक्ष अनपेक्षित आदर्श प्रस्तुत करे, ये मैं नहीं सह सकता। सारी प्रजा इससे दुखी थी, प्रसन्न थी तो सिर्फ यमपाल की स्त्री चांडाली, क्योंकि आज प्रजा के सामने राजकुमार का वध होगा तो नियमानुसार उसके बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उसकी झोली में आ गिरेंगे। ओह, कैसे संभाल पाऊंगी मैं उनको? और वो उस क्षण का इंतजार करने लगी जिस क्षण राजकुमार का मस्तक धूलि में लूटेगा। तभी उसकी कल्पना को भंग करता हुआ यमपाल बोला, देख, आज चतुर्दशी है, मेरी प्रतिज्ञा का दिन, कोई बुलाने आए तो मना कर देना। अपने स्वप्न को बिखरता देख चांडाली क्रोधित हो उठी। बोली, चांडाल होकर भी पंडितों की तरह प्रतिज्ञा करते हो तुम? अरे तुम न सही, कोई और ही आज बधिक बनेगा और तब आभूषण भी तो उसी के होंगे। तभी राजाज्ञा लेकर आए राजपुरुष बलपूर्वक उसे बध स्थान तक ले गए। यमपाल दृढ़ता से राजा के सामने जाकर बोला, महाराज क्षमा करें, मैंने आज के दिन बध न करने की प्रतिज्ञा ली है। ओह, एक बधिक ने अहिंसा व्रत लिया है, राजा कठोरता से बोला, जाओ अपना काम करो। एक एक पल गुजरता गया और फिर फांसी का वो क्षण भी गुजर गया। यमपाल के हाथ फंदे की डोर न खींच सके।

0: राजकीय नियमानुसार निश्चित समय गुजर जाने पर उसे ही ईश्वरीय इच्छामान पुनः बध नहीं किया जाता। राजकुमार पश्चाताप से भर उठा, लेकिन राजा क्रोध से गरज उठा। रे दुष्ट चांडाल, तूने राजाज्ञा न मान मेरी शक्ति को तौलने का दुस्साहस किया है। ले जाओ इसे और चढ़ा दो सूली पर। तभी निस्तब्धता तोड़ती अमृत बरसाती वाणी गूंज उठी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। शब्द उसी ऋषिराज के थे। वे आगे बोले, राजन ये कैसा न्याय है? यमपाल उल्लंघन नहीं अपने प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा कर रहा है। आप तो धर्म और प्रजा के रक्षक हैं, सभी को एक बार सुधार का मौका दो। प्रायश्चित से बढ़कर और कोई ईश्वरीय दंड नहीं है। राजा के नेत्र ज्ञानोदय से चमक उठे। प्रजा ने हर्षद ध्वनि की, ईश्वरीय धर्म की जय हो।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रतिज्ञा विषय पर चिंतन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:45 पर कार्यक्रम खेती की बातें में सुनेगा गर्मियों हेतु चारा विषय पर डॉक्टर डीएस वर्मा की वार्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे 7:10 पर रक्त का महत्व विषय पर डॉक्टर राकेश नारायण की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर एक कार्यक्रम आसपास सुना जा सकेगा प्रातः 7:31 पर। 9:25 पर सुनेगा गांधी चर्चा में अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार।

लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुनेंगे प्रेम तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत करेंगे हारमोनियम पर गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नकारा पर ईश्वर सिंह खींची।

ग्यारह बजे कार्यक्रम आज के कलाकार में आज के कलाकार रहेंगे फिल्म गायक जुबिन नौटियाल। सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर आज का विषय रहेगा बच्चों से न छीने उनका बचपन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दोपहर 1:15 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार जिसमें चर्चा का विषय रहेगा छूट न जाए बचपन। इसी के साथ सुनेगा पद्मावती बघेल से काव्य पाठ संघर्षों से सामना। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आप सुन सकेंगे मयंका अग्रवाल के गाए कुछ गीत और भजन।

दोपहर 2:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित भोलानाथ का धुन मिश्र पीलू में बांसुरी वादन और रविशंकर पंडित का राग पटदीप में सितार वादन। दोपहर 3 पेश किया जाएगा उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, जिसमें आप सुनेंगे फरहा शाहिद का मकाला, जिसका मान रहेगा मोहब्बत, इंसानियत और यादों के शायर बशीर बद्र। कलामी शायर के तहत

शिरकत करेंगे जावेद कमर और अपना अफसाना मुकम्मल ना मुकम्मल पेश करेंगी अफसाना निगार शहनाज खातून।

श्रोताओं, यथा कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। गायक कलाकार है मन्ना डे और शोभा जोशी, और संगीत है सतीश भाटिया का।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

0: श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे मन्ना डे और शोभा जोशी, संगीत था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं गर्मियों हेतु चारा विषय पर डॉक्टर डीएस वर्मा की वार्ता।
1: किसान भाइयों, गर्मियों में पशुओं के लिए हरे चारे की बहुत कमी रहती है, जिसका दूध देने वाले पशुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए गर्मियों में चारा हेत प्रमुख रूप से ज्वार, लोबिया, मक्का व बाजरा फसलों को चारे के लिए बोया जाए। चारे हेत बहुकट ज्वार की ऐसी किस्मों को बोना चाहिए जिसमें HCN यानी जहर की मात्रा बहुत कम होती हो तथा जिन्हें चारे के लिए कई बार काटा जा सकता हो। इसकी प्रमुख किस्में MFHH3 व MFHH4, PSSG 111, MP चरी, पंत चरी व UP चरी नंबर 1 व UP चरी नंबर 2 उपयुक्त हैं। इन किस्मों की बुवाई आलू व सरसों से खाली खेतों में फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से मार्च तक करना लाभदायक रहता है। इसका 30 से 40 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। ज्वार को बोते समय 100 किलोग्राम DAP को 1 हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। बुवाई हमेशा कुंड से करना उचित रहता है। पहली सिंचाई 20-25 दिन बाद करें, बाकी की सिंचाई प्रत्येक कटाई के बाद अवश्य करें। अधिक गर्मी पड़ने पर सिंचाई का अंतर 10-15 दिन रखें। हर कटाई के बाद चारे हेत फसल में 60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर लगाते रहें। बहुकट वाली ज्वार में पहली कटाई 50-60 दिन बाद ही करनी चाहिए। इसके बाद हर 35 से 40 दिन बाद काटने योग्य हो जाती है। इस प्रकार इससे कुल 3 कटाइयां ली जा सकती हैं, जिससे लगभग 300 से 400 कुंटल हरा चारा 1 हेक्टेयर से मिल जाता है। चारे के लिए दूसरी फसल है लोबिया। यह एक दाल वाली फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 20% रहती है, इसलिए अन्य चारों की अपेक्षा दुधारू व कार करने वाले पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पशुओं को इसकी भरपेट मात्रा खिलाई जाए तथा थोड़ा सा भूसा दिया जाए तो पशु बिना रातब खिलाए ही 5-6 लीटर दूध प्रतिदिन देता रहेगा। चारे हेत लोबिया की कई महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे रशियन जॉइंट, UPC 5286, UPC 5287, FOS नंबर 1, लोबिया नंबर 10 व EC 4216। इन किस्मों की बुवाई मार्च से अप्रैल माह तक की जा सकती है। इसकी बुवाई के लिए 30-35 किलोग्राम बीज प्रयोग करना उचित रहता है। बुवाई हमेशा लाइनों में 30-35 सेंटीमीटर की दूरी पर 6-8 सेंटीमीटर लाइनों में गहराई पर करें। लोबिया को अन्य चारे वाली फसलों के साथ मिलाकर भी बोया जा सकता है। मिलाकर बोने पर इसकी बीज की मात्रा 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है। लोबिया में पहली सिंचाई बुवाई के 15 दिन बाद करनी चाहिए। मार्च में बोने पर कुल 4-5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। 2.5 मास यानी फली आने के बाद फसल कटाई योग्य हो जाती है। दूसरी कटाई अच्छी व जल्दी लेने हेतु पहली कटाई को भूमि से 8-10 सेंटीमीटर ऊंचाई से करें। इस प्रकार इससे लगभग 350 कुंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर उपलब्ध हो जाता है। गर्मियों में चारे के रूप में मक्का की फसल को भी

0: पशु बड़े स्वाद से खाते हैं। इसका चारा मुलायम होता है, इसमें पौष्टिकता सिल्क यानी सूत के आने पर अधिक होती है। चारे के लिए मक्का की अफ्रीकन टॉल प्रजाति सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा संकर मक्का में प्रोटीना, गंगा 2, गंगा 5 व गंगा 7 तथा सकुल प्रजातियों में मक्का चारे में किसान और विजय एवं देसी मक्का में टाइप 41 की बुवाई के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में प्रयोग करें। चारे हेतु बुवाई फरवरी के दूसरे पखवाड़े से शुरू की जाती है। बुवाई लाइनों में 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही करें। इसकी बुवाई के समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करने से चारे की भरपूर कटाई मिलती रहती है। इसके बाद 80 किलोग्राम यूरिया 30 दिन बाद वह 80 किलोग्राम यूरिया सिल्क यानी सूत अवस्था पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर दें। सिंचाई व्यवस्था 8 से 10 दिन के अंतर पर करते रहें। इसकी चारे पहली कटाई 70 से 75 दिन बाद ही करें, क्योंकि इस अवस्था पर फसल में मादा मंजरियां निकल आती हैं। मक्का से हरे चारे की औसत उपज लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। इसके अलावा चारे के लिए भहुकट बाजरा की फसल है, जिसको किसान आगरा मंडल में सबसे ज़्यादा उगाते हैं। यह एक अधिक कल्ले फूटने वाली व शीघ्रता से बढ़ने वाली रोग निरोधक चारे की फसल है। इसको सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में बड़ी आसानी से बोकर अच्छा चारा ले सकते हैं। इसको लोबिया के साथ भी मिलाकर बोया जा सकता है। चारे हेत बहुकट बाजरे की कुछ संकर यानी हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे संकर चारा बाजरा नंबर 1 जो प्रो एग्रो कंपनी का है। इसके अलावा महिको या अन्य कंपनियों की किस्में बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। चारे हेत बाजरा की बुवाई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। बोते समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। बाजरा से हरे चारे के रूप में लगभग 4-5 कटाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं। बाजरा की पहली कटाई लगभग 1.5 महीने बाद ही करें। इसके बाद की कटाई एक एक माह पर करते रहें। प्रत्येक कटाई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई का अवश्य ध्यान रखें। चारे हेत बाजरा की बुवाई फरवरी से लेकर अप्रैल के प्रथम पक्ष तक की जा सकती है। बाजरा को लोबिया फसल के साथ भी बो सकते हैं। बोते समय 2 लाइन बाजरा की, 1 लाइन लोबिया की बोएं। बाजरा से लगभग 300 से 400 कुंटल चारा प्रति हेक्टेयर आसानी से मिल जाता है। बहुकट चारे वाली फसलों में कटाई करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कटाई सदैव जमीन से 7 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से करें, ताकि फुटाव वाली कलियां न कट पाएं और फुटाव जल्दी हुआ अच्छा हो जाए। इस तरह चारे की फसल उगाते समय इन बताई गई बातों को अमल में लाकर हमारा पशुपालक गर्मियों में हरा चारा उत्पादन करेंगे तो निश्चित ही पशुओं से दुग्ध उत्पादन उचित मिलता रहेगा और चारा का अच्छा उत्पादन हो सकेगा।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे गर्मियों हेतु चारा विषय पर डॉक्टर DS वर्मा की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 8700

0: 0014242 पर।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: आगामी क्रीडायां सिन्धुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट प्रमुख पश्चात पुरुष एकलवर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंद तरुण मेन्नीपल्ली
1: उक्तम यत एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगम सुदृढ़ करिष्यति
2: सहैव भारत EFTA विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: FM 106.4 MHz विविध

सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में

खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 7:10 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर राकेश नारायण की वार्ता, जिसका विषय है रक्त का महत्व।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 7:10 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर राकेश नारायण की वार्ता, जिसका विषय है रक्त का महत्व।
1: रक्त हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जिस प्रकार ट्रक अथवा मालगाड़ी

0: है कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
4: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय रहते सटीक चेतावनी उपलब्ध होने से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण के निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
5: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं है। ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सेवा में

0: वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ के लोक भवन सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के साथ संवाद करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख हो गई है। अयोध्या में कल हुए होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई EPF टाइप सुझाव दिया जाए, EPF टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के अमरोहा, पीलीभीत और गाजियाबाद सहित कुछ अन्य जिलों में बीती रात बारिश होने से लोग उमस भरी गर्मी से राहत में हैं। पीलीभीत में आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे। वहीं बस्ती जिले में कल रात आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर के जलने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची।

0: वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास का। कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार।

20 जून को होगी विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 17 जून को जारी किए जाएंगे। 1400 से अधिक सीटों के लिए 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। विषय विशेषज्ञों से 20 तक आवेदन आमंत्रित किए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित अतिथि व्याख्याताओं को 90 मिनट के व्याख्यान के लिए ₹2000 मानदेय मिलेगा। आवेदन 20 जून तक किया जा सकता है। असहाय व्यक्तियों की मदद करेंगे अधिकार मित्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पराविधिक स्वयंसेवक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित स्वयंसेवक गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता दिलाने में सहयोग करेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून दोपहर 1:30 बजे निर्धारित की गई है। सम्मान निधि चाहिए तो 30 जून तक केवाईसी कराइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को 30 जून तक ई केवाईसी करानी होगी। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक ने बताया कि केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को अपात्र माना जा सकता है। सुविधा जनसेवा केंद्रों और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 6 जून को प्रस्तावित कई परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के कारण ये निर्णय लिया गया। अब विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 20 और 26 जून को पूर्व निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।

0: अपनी सूचना सुनिए। एक सूचना के अनुसार पिंकी पत्नी पन्ना लाल निवासी भारापुर थाना एवाऊ जनपद मैनपुरी दिनांक 26 अप्रैल 2026 लापता है। इनका रंग गोरा, चेहरा लंबा, शरीर सामान्य है, लंबाई 5 फुट 2 इंच और उम्र 28 वर्ष है। इन्होंने कोका कोला कलर की साड़ी पहन रखी है। इस महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना एवाऊ जनपद मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार ऋचा चौहान पुत्री सोहन सिंह निवासी हिंदूपुर थाना बेवर मैनपुरी दिनांक 21 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र 22 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा लंबा, शरीर सामान्य और कद 5 फुट 4 इंच है। इस युवती के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना बेवर मैनपुरी को सूचित करें। अन्य सूचना के अनुसार सरिता पत्नी कमलेश कुमार निवासी अहमदपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी दिनांक 2 मई 2026 से लापता है। रंग गोरा, चेहरा गोल, शरीर सामान्य और लंबाई 5 फुट है और उम्र 30 वर्ष। इन्होंने बैंगनी रंग की साड़ी पहन रखी है। सरिता के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना बेवर जनपद मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार मधु पत्नी श्रीकांत निवासी करपिया थाना बेवर जनपद मैनपुरी दिनांक 8 मार्च 2026 से लापता है। इनका रंग गोरा, चेहरा गोल, शरीर सामान्य, लंबाई 5 फुट और उम्र 20 वर्ष है। इन्होंने सफेद टॉप और नीली जींस पहन रखी है। इस युवती के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना बेवर जनपद मैनपुरी को सूचित करें। खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

ताज नगरी में दो दिन मौसम बदला रहेगा। तूफानी झोंके झेलने पड़ सकते हैं। ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसे में तापमान में भी उतार चढ़ाव रहेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 7 दिन तक बदलते मौसम की आशंका जताई है। उमस भरी गर्मी ने शहरवासियों से लेकर सैलानियों तक को परेशान कर दिया है। दिन में खिलने वाली धूप और उमस से हालत खराब है। दोपहर में सर्वाधिक परेशानी पर्यटक झेल रहे हैं। पार्किंग के बाद ताजमहल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कूलर पंखे भी काम नहीं कर रहे, एयर कंडीशन भी राहत नहीं दे रहा। हवा में आर्द्रता का स्तर 64% होने के कारण दिक्कतें बढ़ी हुई हैं।

ट्रेनों के बढ़ते संचालन और बेहतर रखरखाव की जरूरत को देखते हुए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन बनने की तैयारी शुरू की गई है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने बुधवार को आगरा दौरे के दौरान रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में आगरा कैंट स्टेशन पर दो पिट लाइनें हैं। तीसरी पिट लाइन बनने से ट्रेनों की समयबद्ध मेंटेनेंस, सफाई और तकनीकी जांच की क्षमता बढ़ेगी। इससे रेल संचालन अधिक सुचारू होगा और यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। पिट लाइन में ट्रेनों के पहियों, एक्सल, ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन और कपलिंग की गहन जांच की जाती है। इसके अलावा एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक की टेस्टिंग, सेंटर बफर, कपलर सहित अन्य यात्रियों और यांत्रिक उपकरणों का रखरखाव किया जाता है। आवश्यक हिस्सों में

लुब्रिकेशन कर घर्षण कम किया जाता है। एसी कोचों के ब्लोअर, फिल्टर, थर्मोस्टेट, लाइटिंग, वायरिंग और चार्जिंग पॉइंट की जांच भी पिट लाइन में की जाती है। इसके साथ ही हाई प्रेशर वाटर जेट से कोचों की धुलाई, आंतरिक सफाई, बायो टॉयलेट्स का सैनिटाइजेशन, पानियों की टंकियां भरने और पेस्ट कंट्रोल का कार्य भी यहीं संपन्न होता है।

एसबीआई को 7,150 अप्रेंटिस चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक ने अप्रेंटिस के 7,150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री हो। स्टाइपेंड 15,000 रूपये दिया जाएगा। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु में ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष, एसटी एससी को 5 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट रहेगी। ऑनलाइन लिखित और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। स्थानीय भाषा परीक्षा क्वालिफाइंग होगी। अंतिम सूची लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। जो अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं में स्थानीय भाषा अध्ययन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे उन्हें स्थानीय भाषा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पर जाएं। इसके बाद एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in/ पर जाएं। होम पेज पर सबसे नीचे करियर्स पर क्लिक करें। खुलने वाले पेज पर करंट ओपनिंग्स के विकल्प पर क्लिक करें और तेज नए पेज पर भर्ती के लिए कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इनमें एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 पर क्लिक करें। नीचे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें और विज्ञापन डाउनलोड करें। अब इसे अच्छी तरह पढ़ लें और अपनी योग्यता की जांच कर लें। इसके बाद दिए गए निर्देशानुसार जानकारी दर्ज कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

गर्म हवाओं से दिल को बचाएं। गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पानी की कमी दिल पर तनाव और बढ़ा देती है। गर्मी में हृदय रोगियों के लिए कुछ बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं ध्यान रखनी। गर्मी के दिनों में हमारे हृदय तंत्र जरूरत से ज्यादा काम करता है। शरीर ठंडा रखने के लिए रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे दिल को ज्यादा ताकत से खून पंप करना पड़ता है। दिल से जुड़ी समस्याएं झेल रहे लोगों में ये अतिरिक्त तनाव खतरनाक साबित हो सकता है और अचानक स्थिति गंभीर हो सकती है। हीट एग्जॉशन क्या है? हीट एग्जॉशन यानी कि गर्मी के कारण होने वाली थकावट। ऐसा तब होता है जब शरीर खुद को ठीक से ठंडा नहीं कर पाता और शरीर का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। दिल के मरीजों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ नियमित दवाएं जैसे बीटा ब्लॉक्स और भी बहुत सी दवाएं शरीर के तापमान और पानी के संतुलन को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इन 6 संकेतों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। त्वचा का पीला पड़ना और अत्यधिक पसीना आना, ये हीट एग्जॉशन का सबसे शुरुआती

0: प्रमुख लक्षण है। इस दौरान शरीर से पानी और नमक तेजी से कम होने लगता है। चक्कर आना या बेहोशी, डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है, जिससे दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता। दिल के मरीजों के लिए ये स्थिति बहुत जोखिम भरी हो सकती है। बहुत कम या तेज धड़कन, दिल की धड़कन का असामान्य रूप से तेज होना या कमजोर महसूस होना स्ट्रेस को दर्शाता है। अधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, अधिक खिंचाव और असंतुलन दर्शाता है, जो दिल की लय को बिगाड़ सकता है। सिरदर्द या उल्टी जैसा जी होना, पेट, इन दिक्कतों के साथ साथ छाती में बेचैनी, सांस फूलना या घबराहट भी होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मानसिक भ्रम और चिड़चिड़ापन, मरीज भ्रमित महसूस करे या गुस्सा बढ़ रहा हो तो सतर्क हो जाए। अगर पैर में सूजन या सांस फूलती हो तो विशेष ध्यान रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर काम को तुरंत रोक दें और किसी ठंडी या छायादार या एयर कंडीशन वाली जगह पर जाएं। तंग कपड़ों को ढीला करें, धीरे धीरे पानी पिएं, ज्यादा ठंडा या बर्फ वाला पानी न पिएं। अल्कोहल से परहेज करें। यदि 30 मिनट के भीतर हालात में सुधार ना हो तो बिना किसी देरी के इमरजेंसी मेडिकल हेल्प को बुलाएं।
1: बल्ली कितने?
2: वाहे गुरु।

श्रोता, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की अपने रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पहले मैं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि

0: भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
4: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
3: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और

0: सेमीकंडक्टर्स तक। 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और

0: ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off

0: में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। एक अहम वाकये में मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मजकूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसायल को मुल्क के लिए बरूएकार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निजाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मसनूई शनाख्त तैयार करने के लिए AI का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मस्कुरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखा दही करने वाले अफराद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजिमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं। ये अनासिर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीकेकार को मुस्तहकम बनाए और सारफीन को शामिल करने के निजाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर यह कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डाटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें। शहरियों को यह सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई और टकराव के असरात से निपटने के लिए
2: ये अनासिर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो

0: फेक का पता लगाने के तरीकेकार को मुस्तहकम बनाए और सारफीन को शामिल करने के निजाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर ये कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डाटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुताल्लिक ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें। शहरियों को यह सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई और टकराव के असरात से निपटने के लिए मजबूत और मुतनव सप्लाई निजाम, पायदार सिफारती कोशिशों और बैन अवी इश्तराक में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जोग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज़े खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम वक्त और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है।
2: पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत में मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों का अहम रोल रहा है। इस अरसे के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बनाने की सम सरकार की जानिब से किए गए इकदाम की बात कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: पिछले 12 साल के दौरान भारत एक मजबूत आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह वो जरूरतमंदाना इकदाम हैं जो अजाइम को अमल से जोड़ते हैं। वज़ीरे आज़म की क़यादत ने उन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे ये बात यकीनी हुई है कि भारत की आवाज आलमी प्लेटफॉर्म पर गूंजे। भारत ने मुल्क मुकदम के उसूल को सबसे ऊपर रखते हुए खारजा पॉलिसी में नई तवानाई फूंकी और अपने पुराने ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ नए दोस्त भी बनाए। भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात कोविड-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपने इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वैक्सीन मैत्री इकदाम शुरू किया। जनवरी 2021 से भारत ने 99 ममालिक और अक्वाय मुत्तहदा के दो इदारों को 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से वैक्सीन की तेज रफ्तार तरसील खैर सगाली का एक गहरा मुजाहरा था। उन्होंने भारत, उसकी हुकूमत और उसके अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निमटने के ऑपरेशंस भारत की आलमी शमूलियत का एक अहम हिस्सा रहा है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के मशरकी साहिल पर तूफान दित्वा आया, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों बेघर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होकर रह गया। श्रीलंका के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भारत ने श्रीलंका को फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, इसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ

0: करने वाले किट्स और तकरीबन 4.5 टन अद्वियात और सर्जिकल आलात, इसके अलावा 60 टन खसूसी साजो सामान शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रोवान कदी थुकू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ बेपनाह गर्मजोशी और यकजहती का मुजाहरा किया है। पिछले 12 साल में भारत ने वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मौसर इकदामात के जरिए एक आलमी रहनुमा के तौर पर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में बेशरफ का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में बेशरफ हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। खवातीन का 10वां आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेरे कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्ना बॉय ने शायद
2: जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमात के लिए एजाज से नवाजा।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई जहानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मतनव सप्लाई निजाम और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
4: ये हवा चलती है तो बहुत सर्दी लगती है।
5: मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ।
4: लकड़ियाँ गीली हैं और तुम्हारा दिल

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में फिल्म दीवानी का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गीत। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था अनु मलिक का। आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल का ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

0: श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम के स्वर में फिल्म दीवाना का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत में ढाला है नदीम श्रवण ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन का ये गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: फरुखाबादपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IGR शिकायतों के निस्तारण एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, शिकायतकर्ताओं से संवाद, साक्ष्यों के अपलोड तथा फीडबैक की गुणवत्ता की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सक्षम अधिकारी स्वयं निस्तारण की आख्या परीक्षण कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तथा तत्परक समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारण आख्या के साथ आवश्यक साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, जिसमें शिकायतकर्ता से वास्ता, स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तथा शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दो पड़ोसियों के बयान सम्मिलित हों। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोकने के आदेश दिए।
2: अधिकारियों के लेवल पे जो असंतोषजनक फीडबैक है वो भी चेक किया गया और समीक्षा करने पे पाया गया कि असंतोषजनक फीडबैक के मुख्य कारण ये थे कि शिकायतकर्ता से फोन पे बात की नहीं गई है। इसलिए बार बार निर्देशित भी किया गया था मीटिंग के बाद कि इसको फीडबैक लिया जाए।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी द्वारा जनपद के हरदोई कमालगंज मार्ग पर गंगा नदी पर 191.13 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने पहुंच मार्ग पर संभव कटान वाले स्थलों के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से अब तक किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की प्रगति की आख्या प्राप्त की। उन्होंने गंगा नदी किनारे कराए जा रहे पिचिंग कार्यों के भौतिक सत्यापन भी किया तथा कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए जाने के पूरे निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पूरी गुणवत्ता तथा मानक के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें आम जन को आवागमन से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजना जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने नियमित रूप से कार्यों की निगरानी तथा कटान प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति संभावित न रहे। फरुखाबाद जनपद में परिवहन विभाग द्वारा किसानों की सुविधा एवं उनके वाहनों से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किसान ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से किसानों को ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवश्यक सेवाएं सरल एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराई गई। शिविर में पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन, आवश्यक अभिलेखों की जाँच, अन्य संबंधित प्रक्रियाएं पूर्ण की गयी, जिससे किसानों को विभागीय कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन द्वारा ये प्रयास किसानों को सुगम, पारदर्शी एवं जनहित सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 18 करोड़ की लागत से बन रहे क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में देरी के चलते उस पर पेनल्टी लगाई गई है तथा कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट को हैंडओवर कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फरुखाबाद जनपद में मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना अंतर्गत शाकभाजी कार्यक्रम एवं बागवानी मशीनरीकरण योजनाओं के हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नवीन गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद फरुखाबाद के कृषकों के लिए विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त हुए। योजनाओं का उद्देश्य कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों तथा कृषि यंत्रीकरण से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि कराना है। आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकर शाकभाजी कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु 30 हेक्टेयर तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 10 हेक्टेयर, कुल 40 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आधारित बागवानी मशीनीकरण योजना अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। फरुखाबाद जनपद में जिला जज नीरज कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का फीता काटकर समाधान समारोह का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण में रफ्तार मिलेगी, सुलह समझौतों से समाधान होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में समाधान समारोह 2026 के सफल आयोजन को लेकर जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले चिन्हित वादों के निस्तारण हेतु प्री सिटिंग वार्ताओं और सुलह समझौते की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज समेत अन्य न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
0: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
3: बीता माह जनपद शाहजहांपुर के लिए विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक उपलब्धियों, धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। जिले में जहां एक ओर विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी जन जागरण के लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। माह के पहले सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिर्जापुर विकास खंड के ग्राम पहरुआ स्थित ऐतिहासिक

0: जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारण आख्या के साथ आवश्यक साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, जिसमें शिकायतकर्ता से वास्ता, स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तथा शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दो पड़ोसियों के बयान सम्मिलित हों। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोकने के आदेश दिए।
1: समीक्षा करने पे पाया गया कि असंतोषजनक फीडबैक के मुख्य कारण ये थे कि शिकायतकर्ता से फोन पे बात की नहीं गई है, इसलिए बार बार निर्देशित भी किया गया था मीटिंग के तहत कि इसको फीडबैक लिया जाए।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फरुखाबाद और शाहजहां

0: ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण, सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य तालाब में रहने वाले कछुओं का संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन तथा जैव विविधता को बढ़ावा देना है। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही भैंसी और गोमती नदी तटों पर हरिशंकरी वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया गया। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर क्षेत्र में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम की समीक्षा बैठक में 108 सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई तथा 15 जून तक 5 प्रमुख सड़कों का निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। माह के दूसरे सप्ताह में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अभ्यर्थियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष यातायात अभियान में 1013 वाहनों के चालान किए गए तथा 3 नए वाहनों को सीज किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शाहजहांपुर में अपनी पहचान मजबूत की। जिले के युवा रंगकर्मी यश देव शर्मा और शैलेंद्र पटेल का चयन भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ की अंतिम चयन कार्यशाला के लिए हुआ। इस उपलब्धि को जिले के रंगमंच जगत के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में गायत्री परिवार की ज्योति कलश रथ यात्रा पूरे माह चर्चा का केंद्र रही। शांति कुंज हरिद्वार से 2400 तीर्थों की रज लेकर निकली यह यात्रा जिले के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, आरती और जयघोष के साथ स्वागत किया। रथ यात्रा के माध्यम से विचार क्रांति, युग निर्माण, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, आत्म सुधार और संस्कार निर्माण का संदेश जन जन तक पहुँचाया गया। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर दीप यज्ञ, सामूहिक प्रार्थना और साहित्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भावलखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत तहवरगंज आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा एक बालिका का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना शामिल है, ताकि नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और संस्कारित नई पीढ़ी के निर्माण में आंगनवाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। एक जनपद एक उत्पाद ODOP वित्त पोषण योजना स्थानीय उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना का लाभ लेकर शाहजहांपुर के 2 उद्यमियों ने न केवल अपना कारोबार स्थापित किया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। मोहल्ला बाड़ूजी पेशावरी निवासी मोहम्मद राशिद ने जरी जरदोजी की इकाई स्थापित करने के लिए केनरा बैंक घंटाघर शाखा से 3 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। इस सहायता से उन्होंने अपना काम शुरू किया, जिससे 5 अतिरिक्त परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से भी अधिक पहुंच चुका है। वहीं मोहल्ला लोधीपुर निवासी रुकैया खान ने केनरा बैंक सदर शाखा से 5 लाख रुपए का ऋण लेकर जरी जरदोजी की इकाई स्थापित की। उनके उद्यम से भी 5 परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का कारोबार 9 लाख रुपए से अधिक का हो गया है। दोनों उद्यमियों ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा मिले सहयोग और प्रोत्साहन को दिया है। उन्होंने कहा कि ODOP योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और दूसरों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

प्रस्तुत हैं अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। मैं जानता हूं कि यदि मैं अधीर बन जाऊं तो मुझे सत्य के दर्शन नहीं हो सकेंगे। दुनिया की दृष्टि में मेरा निरहंकारी होना कोई कीमत नहीं रखता। जहां अहिंसा है वहां असफलता असंभव है। इसलिए जहां असफलता दिखाई पड़े कहना ही होगा कि वहां अहिंसा नहीं है। मुझमें अहंकार अधीरता आदि दोष हों तो मैं उनका साक्षी नहीं बन सकता। कुछ अंशों में दूसरे ही बन सकते हैं। इसका सच्चा साक्षी तो ईश्वर ही है। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उसकी सिद्धि का साधन। मैंने तलवार के न्याय को सदा के लिए छोड़ दिया है। अहिंसा की शक्ति की तरह अहिंसक की शक्ति भी अमाप होती है। अहिंसक स्वयं कुछ नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है। इसलिए भविष्य में ईश्वर उससे क्या कराएगा से वह कैसे कह सकता है। अहिंसा उत्तम है, लेकिन अगर मैं सांप का भय छोड़ नहीं सकता हूं तो उस हालत में क्या करूं। मन से तो उसे मार चुका हूं, कर्म से मारने से हिचकिचाता हूं। तब धर्म कहता है कि तुम्हारे स्वभाव के मुताबिक मारो, उसे नहीं मारने का व्यवसाय व्यर्थ है। शक्ति से ज्यादा काम करने का दोष मुझमें कम है। कहने का मतलब यह है कि अहिंसा की प्रवृत्ति में मर्यादा से अधिक काम करने की गुंजाइश नहीं है। जिसमें मर्यादा नहीं उसमें अहिंसा नहीं। मुझमें तो कमी है ही, सब कामों में अहिंसा होनी चाहिए। जिससे बात करो प्रेम से करो। ब्रह्मचर्य और अहिंसा का संबंध शरीर के साथ है, इसलिए इन्हें शारीरिक तप कहा है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है, इसके बारे में मुझे भी शंका थी, अब नहीं है। दोनों का संबंध शरीर के साथ है। मनोविकार का असर शरीर पर होता है, इसी तरह क्रोधादि हिंसक विकारों का भी अगर शरीर न होता तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य अर्थविहीन हो जाते। अर्थात दोनों शरीर के धर्म हैं और दूसरे शरीर के साथ धर्म रखते हैं। अहिंसा या प्रेम को दुख लगे तो अहिंसक दुख हिंसा करे, उसी का लगना चाहिए। कोई मुझे गाली दे तो उससे मुझे दुख क्यों होना चाहिए। अहिंसा हिंसक के प्रति बनाई जा सकती है। अहिंसक के प्रति अहिंसा कैसी? सूर्य के सामने लालटेन, सत्य भूयात प्रियम भूयात। यह व्यवहार वचन नहीं बल्कि सिद्धांत है। प्रियम का अर्थ अहिंसक है। अहिंसक सत्य के संबंध में ये होता है, अवश्य है कि उस समय वह चुभता है, लेकिन परिणाम में वो अमृतमय लगता ही चाहिए। यह अहिंसा की अनिवार्य कसौटी है। अहिंसा सबका भला चाहती है। ईश्वर के यहां सबकी भलाई का ही न्याय होता है। वह कैसे किया जाता है और कैसे न्याय में मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सो खोजना हमारा काम है। इस नीति के विरुद्ध नीति प्रस्तुत करना हमारा काम कदापि नहीं। सत्य की खोज करते हुए अहिंसा की जरूरत देखी, इसलिए उसे विकसित करने का प्रयत्न किया।

उसमें से उपग्रह की आवश्यकता प्रकट हुई, पर ब्रह्मचर्य के बिना यह सब अधूरा लगा। इसी सिलसिले में सत्याग्रह की खोज हुई, उसके निमित्त से निर्भयता आई। इसके बाद अस्वाद का नंबर लगा, लेकिन अब देखता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अस्वाद आवश्यक है। इन गुणों को जिस हद तक विकसित कर सका हूं, वह गहरे विचार और भारी प्रयत्न का परिणाम है। इन सब के मूल में ईश्वर पर अविचल श्रद्धा तो है ही, अहिंसा डरपोक का या नामर्द का धर्म नहीं, वह बहादुरों का और मर मिटने वालों का धर्म है। जो तलवार से लड़कर मरते हैं वे अवश्य बहादुर हैं, लेकिन जो बिना मारे धैर्यपूर्वक खड़ा रहकर मरता है वह अधिक बहादुर है। अतएव जो मार के डर से चावल के बोरे मुफ्त दे देता है वह डरपोक है, अहिंसक नहीं। वह अहिंसा के तत्वों को जानता नहीं। मार के डर से जो स्त्रियों का अपमान सहन करता है वह मर्द न रहकर नामर्द बनता है। वह न पति बनने के योग्य है, न पिता और न भाई। ऐसे लोगों को शिकायत करने का अधिकार नहीं। तो ये थे अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। और अब आइए सुनते हैं डीवी पलुस्कर की आवाज में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप गांधी चर्चा में सुन रहे थे अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड का ये गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र की शब्द रचना को सरबद्ध किया था एसडी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार के स्वर में फिल्म डॉन से। अनजान की इस शब्द रचना को सरबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रेम तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नकारा पर हैं ईश्वर सिंह खींची।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रेम तिवारी के गायक कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे थे हारमोनियम पर गोपाल सिंह परमार, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नकारा पर थे ईश्वर सिंह खींची। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 10 बजे आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

0: श्रोताओं अभी आपने सुना सोनू निगम के स्वर में फिल्म कल होना होगा ये गीत। जावेद अख्तर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। अब इस अंतराल के बाद आप सुनेंगे अरिजीत सिंह को फिल्म कलंक में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ। क्यों?

0: इसके ले रहे हो, ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

नहीं, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दोषी टकराते गए।

अभी आपने सुना अलका याग्निक और हरिहरन के स्वर में फिल्म खामोशी द म्यूजिकल का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल के स्वर में फिल्म विवाह का ये गीत। इस गीत को लिखा और संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का एक गीत, जिसे आवाज दी थी सोनू निगम और हरिहरन ने। ए आर रहमान की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था। संगीत था इस गीत में ए आर रहमान का। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम सुर सरिता में ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनवर हुसैन खान का राग ललित में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनवर हुसैन खान का राग ललित में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनवर हुसैन खान का संतूर पर बजाया राग ललित। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सुनेंगे मखमली आवाज रखने वाले एक गायक के गीत, जिनका नाम है जुबिन नौटियाल। जी हां, जुबिन नौटियाल ने अपनी सुंदर आवाज के जरिए हिंदी बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और बहुत से सुपरहिट गीत हिंदी बॉलीवुड को दिए। भारतीय पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून सन 1989 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। आपने बहुत शोहरत हासिल की आपकी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गायकी के लिए। तुम ही आना, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, राता लंबिया, ये वो गीत रहे जो काफी पसंद किए गए। इनके शुरुआती शिक्षा की अगर बात करें तो देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी और वेलहम बॉयज स्कूल से इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद इनकी पढ़ाई हुई मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से। पिता रामशरण नौटियाल और माता नीना नौटियाल की संतान जुबिन को बचपन से ही संगीत का काफी शौक रहा। जब ये मात्र 4 साल के थे तो संगीत में इनकी गहरी रुचि रही। इनके पिता भी संगीत को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उन्होंने टीवी शोज में भी हिस्सा लिया और आगे बढ़े।

सन 2014 में इनको पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक की मदद से फिल्म सोनाली केबल के गीत को गाने का मौका मिला। इस गीत का शीर्षक था एक मुलाकात। आपने बहुत सी भाषाओं में गीत गाए और विभिन्न शैलियों के लिए इनको जाना जाता है।

मित्रों अक्सर होता क्या है? कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन सा गुण छुपा हुआ है, कौन सी काबिलियत छुपी हुई है, और कई बार इसका पता हमें चल जाता है परिस्थितियों के माध्यम से, हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से। कभी कोई शुभचिंतक हमें बताता है तो हमारे साथ की दोस्त मंडली, और कई बार हमें खुद अपने अंदर से ये आवाज सुनाई देती है, हमारी आत्मा की, हमारे मन की आवाज, कि कुछ तो है जो हमारे अंदर खास है। पर इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ लोग जिंदगी की भागदौड़ में, तनाव में, अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते अपने उस खास गुण को भूल जाते हैं, उसे तवज्जो नहीं देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उस खासियत को पहचान कर उसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश में लग जाते हैं, थोड़ा ही सही लेकिन उसके लिए वक्त निकालते हैं, हर दिन अपना कुछ समय उस नायाब गुण को देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये खास गुण उनके अंदर है, प्रकृति ने उस काबिलियत से उन्हें नवाजा है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि इसे वो दूसरों के सामने लाए, इसे तराशे, निखारे, विकसित करें और इसे भी अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगर आपके अंदर भी कोई

हुनर है, कोई अच्छा गुण है, कोई काबिलियत है या कोई ऐसा काम है जिसे करने में आपकी रुचि है, तो इस शौक को, इस रुचि को मरने ना दें, इसे जिंदा रखें और इसके लिए कुछ समय जरूर निकालें। यकीन मानिए कि आपको इसे जिंदा रख के खुद जिंदा होने का एहसास होगा। जिंदा तो हम सभी हैं, लेकिन कई बार हम ये बात भूल जाते हैं। कई बार हम सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाते हैं, लेकिन आपके अंदर की कोई काबिलियत जिसे आप अपना समय देते हैं, लगातार कुछ समय उसके लिए निकालते हैं, अपनी दिनचर्या का उसे हिस्सा बनाते हैं और उसमें निरंतर लगे रहते हैं ताउम्र, तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा। आप हमेशा खुश महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन का सदुपयोग किया और जीवन को भरपूर तौर पर जिया। जुबिन को एक बहुत ही मखमली आवाज मिली, बहुत ही सुंदर आवाज मिली और उन्होंने संगीत के प्रति अपनी रुचि को बचपन में ही प्रकट किया। 4 साल की छोटी उम्र में ही संगीत के प्रति इनके झुकाव ने इनको आगे बढ़ाया। ये प्रेरित हुए अपने पिताजी के गायन से और इसके साथ देहरादून में इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, जहां पर इन्होंने संगीत को एक विषय के रूप में पढ़ा और शास्त्रीय संगीत में अपनी बुनियाद मजबूत की। वाद्यों की बात करें तो उन्होंने गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम जैसे वाद्य यंत्रों को बकायदा बजाना भी सीखा। 18 वर्ष की उम्र तक नौटियाल एक गायक के रूप में काफी प्रसिद्धि पा चुके थे। आपने कई कार्यक्रमों में लाइव प्रस्तुतियां दी, साथ ही सोशल सर्विस से भी आप जुड़े रहे।

जुबिन को अपनी बेहतर प्रस्तुति और शानदार गायकी के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें आईफा अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और भी कई सम्मान शामिल हैं। इन्होंने टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले संगीत के एक रियलिटी शो में भाग लिया, जहां पर शीर्ष 25 चुने गए प्रतिभागियों में इनका भी एक नाम आया। फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए इन्होंने एक गीत गाया जो काफी पसंद किया गया। साथ ही संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के साथ एक दूजे के वास्ते के शीर्षक गीत के लिए और अमित त्रिवेदी के साथ फिल्म फितूर में इन्होंने काम किया, जहां पर इन्होंने सुनिधि चौहान के साथ तेरे लिए गीत को अपनी आवाज दी। इन्होंने तेलुगु और बंगाली गाने भी गाए। सन 1920 लंदन के लिए गुम नाम है कोई, इस गीत को भी इन्होंने अपनी बेहतर आवाज से नवाजा। आपको संगीतकार जीत गांगुली के साथ काम करने का सुनहरा मौका भी मिला और एक के बाद एक इस तरह से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते गए।

इसी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार अब संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज आपने सुने पार्श्व गायक जुबिन अभिनेता की आवाज में, जुबिन नौटियाल की आवाज में गाए गए गीत। श्रोताओं, आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आज का विषय रहेगा बच्चों से न छीने उनका बचपन। बच्चों से न छीने उनका बचपन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर इस संदेश को जानना और समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी वैशाली शर्मा। हर साल 12 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा सन 2002 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य था बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैले और बच्चों को उनके अधिकारों, शिक्षा और एक गरिमापूर्ण बचपन का अवसर दिलाया जाए। इस दिन का मुख्य मकसद यही है कि पूरे संसार में बाल श्रम की कठोरता को समाप्त किया जाए, बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बाल श्रम एक छोटी समस्या नहीं है साथियों, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है जो बच्चों को उनके शारीरिक और मानसिक विकास से वंचित करती है, उनका मासूम बचपन उनसे छीनती है, उनके विकास को रोकती है। अगर हम देश की तरक्की की बात करते हैं तो हमें बाल श्रम के खिलाफ भी सोचना होगा, बात करनी होगी। इस दिवस को मनाने का आयोजन पहली बार सन 2002 में हुआ। हर बच्चे को काम के बजाय शिक्षा मिले, समय पर गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया जाए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी मिले, यही इस दिन का उद्देश्य है। अक्सर देखा गया है कि कई बार कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते या मासूम बच्चों की किसी मजबूरी का फायदा उठाकर उनके बचपन को श्रम में लगा देते हैं, वो श्रम जिसे अभी करना उनके लिए सही नहीं है। मासूम बचपन होता है विकास के लिए, खुलकर जीने के लिए। बच्चे अपने बचपन में बहुत सी चीजें सीखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उनको नई नई चीजों को जानने समझने का मौका मिलता है। ये वो समय होता है जो उनके जीवन में सिर्फ एक बार आता है, दोबारा नहीं लौटता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे जीवन की हर अवस्था एक बार आती है, फिर चाहे वो किशोरावस्था हो, युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, वृद्धावस्था हो, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। जब हम अधिकारों और हक की बात करते हैं तो हम मासूम बच्चों को अपने अधिकारों से वंचित कैसे कर सकते हैं? इस संसार के हर जीव जंतु, प्राणी और बिल्कुल इसी तरह नौनिहालों को, शिशुओं को, बच्चों को भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। अपनी मर्जी से जीने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत करें, बल्कि ये कि उनके बचपन में जिस तरह से उन्हें जीना चाहिए वो उस तरह का जीवन प्राप्त।

और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सभी इस बात का संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, शिक्षा जो कि उनके लिए बेहद जरूरी है। वो शिक्षा ही है जो उन्हें सही गलत की पहचान कराती है, उनको मार्गदर्शन देती है, आगे बढ़ाने का मौका देती है और वो आधार होता है जिस पर टिका होता है उनका सुंदर जीवन, सुंदर भविष्य। और वो शिक्षा प्राप्त करके ही देश के समझदार नागरिक बन सकते हैं, अपने अधिकारों को समझ सकते हैं। तो आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम इस अभियान को वैश्विक स्तर पर फैलाने में खुद की भी भूमिका निभाएंगे।

तारे जमी पर। इस फिल्म को आपने देखा भी होगा और इसके गीतों को सुना भी होगा। इसका एक गीत है जिसका जिसके बोल ही हैं तारे जमी पर। वास्तव में बच्चे तारों की तरह ही तो होते हैं जो जमी पर चमकते हैं, और कितने प्यारे लगते हैं ना ये चमकते हुए। बच्चे हर घर की रौनक होते हैं। बच्चे वो होते हैं जिनमें हम अपना बचपन देखते हैं। बच्चे वो होते हैं जिनकी मासूम हरकतों, प्यारी प्यारी बातों को देखकर हम जिंदगी का तनाव और शरारतें कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। इनका प्यार निष्पक्ष और शुद्ध होता है। इनकी संगत

में जिंदगी की खूबसूरती छिपी होती है। इन बच्चों को इस बात की बहुत जरूरत है कि आज के समय में सुरक्षा मिले और सम्मानजनक बचपन का अधिकार मिले। इन्हें मजदूरी नहीं बल्कि शिक्षा, अवसर और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। इस दिवस को मनाने की बेहद आवश्यकता थी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस किसी ने भी इस सोच को देखकर ऐसी योजना बनाई कि इस दिवस को मनाया जाए, वास्तव में उसके अंदर यही ख्याल आया होगा कि बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सी जगहों पर यह देखा गया कि बच्चों के साथ क्रूरता हुई, कठोरता हुई और चंद रुपयों के लिए, किसी स्वार्थ के लिए उनसे श्रम कराया गया और उनसे उनका मासूम बचपन, उनका सबसे बड़ा हक, फिर चाहे वो शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो या स्वास्थ्य हो, छीन लिया गया। बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए एक वैश्विक ढांचा बनाया गया है और बाल श्रम से निपटने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज पूर्ण तौर पर नहीं लेकिन काफी हद तक लोग आगे आ रहे हैं।

एकजुट होना, आवाज उठाना और उसके बाद कुछ गलत देखने पर उसके खिलाफ कदम उठाना और कार्रवाई करना, ये सभी के लिए जरूरी है। बच्चों को लेकर, बच्चों के खिलाफ अगर आप कुछ भी देखते हैं होते हुए, तो ऐसे में आपका आवाज उठाना बेहद जरूरी है। इसके लिए परिवारों और समुदायों की प्रतिबद्धता का होना ही वास्तविक परिवेश में बदलाव ला सकता है। कोई भी नियम जब बनाया जाता है तो वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि वो समाज की, दुनिया की बेहतरी के लिए होगा। उसमें सभी के प्रति समानता का भाव रखा जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वर्ग का हो या स्थिति का हो। शारीरिक या मानसिक तौर पर अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, स्वतंत्रता और खुशी सबकी जरूरत है। इस मामले में प्रगति को गति देने के लिए यूनिसेफ और आईएलओ सरकारों से निम्नलिखित बिंदुओं का आह्वान किया जा रहा है, जिसमें कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा में निवेश, सार्वभौमिक बाल लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा शामिल है ताकि परिवार बाल श्रम का सहारा ना ले। किसी भी समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। कई बार परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होने पर ऐसे में उस परिवार में रह रहे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें छोटी सी उम्र से काम पे लगा दिया जाता है। ऐसे में इस बात की जरूरत है कि सभी परिवार सक्षम हों, समर्थ हों और बच्चों को काम पर ना लगाया जाए। कई बार बच्चों को जोखिम का सामना भी करना पड़ता है, विशेष रूप से बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों का सामना कर रहे बच्चों की पहचान करने, उन्हें रोकने और उनकी सहायता करने के लिए बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंच सके, विशेष रूप से ग्रामीण और संकटग्रस्त क्षेत्रों में, ताकि हर बच्चा सीख सके, पढ़ सके, ये बेहद आवश्यक है। वयस्क और युवा जो कि सम्मानजनक काम कर सकते हैं, उनके लिए ऐसे कार्यों को सुनिश्चित करना जिसे श्रमिकों के संगठित होने और अपने हितों की रक्षा करने के अधिकार शामिल है। इस शोषण को समाप्त किया जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और इस सुरक्षा से जुड़े हुए सभी कानूनों को लागू किया जाए और इसमें सभी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। ये सभी बिंदु इस अभियान के अंतर्गत शामिल हैं।

श्रोताओं, आज के बच्चे ही कल के युवा और देश का, समाज का भविष्य है। वो सिर्फ ना सिर्फ अपने परिवारों के लिए बेहद जरूरी

है बल्कि इस देश का भी भविष्य है। अगर आप अपने आसपास बाल श्रम होते हुए देखते हैं या किसी भी ऐसे बच्चे को देखते हैं जिसके साथ असामान्य या असुरक्षित व्यवहार किया जा रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है, उससे मजदूरी कराई जा रही है और उससे उसका बचपन छीना जा रहा है, तो आप इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कदम मासूमों से उनका बचपन छीनने में बेहद सहायक होते हैं और इसका परिणाम ये होगा कि जब हम में से हर कोई इसके लिए आगे आएगा तो एक सुरक्षित माहौल बन सकेगा इन मासूमों के लिए। इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, दोपहर के 12 बजने को है। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवांशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश,

0: महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में या

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

जीवन में कोशिशें उतनी ही जरूरी है जितनी की सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच को साकार रूप देने के लिए प्रयास करना भी आवश्यक है।

प्रयासों का सफल होना या असफल होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप अयोग्य हैं, वरन हर प्रयास आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। लगातार किए जाने वाले प्रयास जीवन में निरंतर सीखने और कार्यों में कुशलता व गुणवत्ता लाने का कार्य करते हैं।

बिना परिणाम की चिंता किए सकारात्मक सोच रखकर अपने कार्यों को करते जाना सफलता का सूत्र भी है और प्रमाण भी।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

ये गीत हमने लिया था फिल्म आशिकी 2 से। मुस्तफा जाहिद के स्वर में इस गीत को आपने सुना, रचना मासूम की और संगीत था जीत गांगुली का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रेया घोषाल के स्वर में सुनिए फिल्म शिवा का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं नितिन रायकवार ने और संगीत है इलायराजा का।

गीत आपने सुना फिल्म आवारापन से, आवाज थी सुजैन की। सईद कादरी और आसिफ अली बेग की रचना को संगीत दिया था प्रीतम ने। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म जहर से, स्वर है आतिफ का। सईद कादरी ने इसे लिखा है और संगीत बद किया है मिथुन शर्मा और नरेश शर्मा ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर्स पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के एक बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर
1: बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
0: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

0: साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीराज़म नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत पहली बार 28 रियासतों और 5 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंतज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहड़ी ने कहा कि नीति आयोग ने मीटिंग के दौरान वज़राए आला के दूरंदेश तबसरों और उनकी रियासतों में किए गए कामों से फ़ायदा उठाया। खिदमत, गुड गवर्नेंस और लगन को वक्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खिदमत के 12 बरस मुकम्मल होने के ज़िम्न में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोकभवन में मीडिया से खिताब कर रहे हैं। इससे कबल कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक रियासत में भी हर शहरी को बाइख्तियार बनाने को तरक्की की बुनियाद बनाकर एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में फ़ाल किरदार अदा कर रही है।
1: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरा है, यहाँ माहौलियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाजमी है। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौतम बुद्ध नगर में UPSRTC की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का इफ्तिताह करने के मौके पर बोल रहे थे। गौरतलब है कि जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली तक में 15 जून से ई सिटी बसें चलाई जाएंगी। प्रोजेक्ट के तहत 510 बसें चलाई जाएंगी, लेकिन पहले मरहले में सिर्फ 110 सिटी बसें चलेंगी। इसके बाद 100 ई सिटी बसें वज़ीर आला ई सिटी बस स्कीम के तहत 4 से 5 महीने में दस्तियाब कराई जाएंगी। गुज़िश्ता 12 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर भारत में काबिले ज़िक्र तरक्की हुई है। हुकूमत की जानिब से गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए उठाए गए इकदामात पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: मरकजी हुकूमत ने साइबर मुजरिमों की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम और मालियाती ढांचे को लाहक बढ़ते हुए खतरे के बारे में एक अलर्ट जारी किया है। वजारत दाखिला के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक साइबर मुजरिम माली और जाती फ्रॉड के लिए AI से चलने वाली डीप फेक वीडियोज़ का तेजी से गलत इस्तेमाल

कर रहे हैं। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वह अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, मशकूक लॉगिन की कोशिशों से चौकन्ना रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन की बाकायदगी से निगरानी करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी मशकूक मालियाती लेनदेन की इत्तला फौरी तौर पर दें। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज लखनऊ में महकमा मेहनत और रोजगार एक खसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है,

तेज रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली। अमरोहा में कल रात से मूसलाधार बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि पीलीभीत जिले में भी रात से सुबह तक बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ समेत रियासत के बेशतर अजला में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, आप सुन रही हैं अपना प्रिय कार्यक्रम घर संसार और आज आपके साथ है आपकी रेडियो हम सफर वंदना तुली। बहनों, आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और घर में बच्चों की धमा चौकड़ी भी खूब हो रही होगी। भाई क्यों ना हो, बच्चे हैं तो बचपना तो करेंगे ही। और बचपन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही आंखों के सामने खिलखिलाती मुस्कान, इधर से उधर खेलते कूदते बच्चे, रंग बिरंगे सपने और ढेर सारी शरारतें तैरने लगती हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी बच्चे के हाथों में खिलौनों की जगह औजार हो, किताबों की जगह काम का बोझ हो और सपनों की जगह जिम्मेदारियां हो, तो क्या वो बचपन सचमुच बचपन रह जाता है? मैंने हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और खुशहाल बचपन का अधिकार है, लेकिन आज भी दुनिया के कई बच्चे बाल श्रम के कारण अपने बचपन से दूर हो जाते हैं। इसी चिंता को लेकर हर वर्ष 12 जून यानी आज ही के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बहनों 2002 में हुई थी और इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। बचपन जीवन की वो नींव है जिस पर भविष्य की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब कोई बच्चा स्कूल जाने की उम्र में किसी दुकान, ढाबे, कारखाने या खेत में काम करने को मजबूर होता है, तो उससे केवल उसकी पढ़ाई ही नहीं छिनती बल्कि उसके सपने, उसका आत्मविश्वास और उसका भविष्य भी प्रभावित होता है। बहनों, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी परिस्थितियां बाल श्रम को बढ़ावा देती हैं। लेकिन यह भी सच है कि समाधान केवल कानूनों से नहीं बल्कि समाज की सामूहिक संवेदनशीलता से निकलेगा। बहनों, यदि हम अपने आसपास किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखें तो उसे सामान्य बात मानकर अनदेखा ना करें, क्योंकि एक छोटी सी जागरूकता, एक सही सूचना या एक सकारात्मक पहल किसी बच्चे को फिर से स्कूल और उसके सपनों की दुनिया में लौटा सकती है। मैंने कहा भी गया है, सबसे अनमोल उपहार जो किसी बच्चे को दिया जा सकता है वो उसका बचपन है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें यही याद दिलाता है कि बच्चों की जगह कार्यस्थलों पर नहीं बल्कि विद्यालयों, खेल के मैदानों और खुशियों से भरी दुनिया में है। दुनिया भर में इस दिन का उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिले। आइए बहनों, इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि किसी भी बच्चे का बचपन काम के बोझ तले न दबे, कोई सपना अधूरा न रह जाए और हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। बहनों, इसी बात पर मुझे कुछ याद आ रहा है, नन्हे हाथों में किताब हो। कितना सुंदर लिखा है कि नन्हे हाथों में किताब हो, आंखों में सुंदर ख्वाब हो, काम नहीं अधिकार मिले, काम नहीं अधिकार मिले, हर बच्चे को खुशहाल बचपन मिले। आइए बचपन की इसी खूबसूरती को महसूस करते हैं इस गीत के साथ।

0: जी बहनों, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है। बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि क्या माँ बाप की परेशानियां हैं, घर में किस तरह की टेंशन है, क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, नादान होते हैं। और बच्चों का व्यक्तित्व तब निखरता है जब उन्हें मिलता है प्यार, शिक्षा, खेल और सीखने का अवसर। बाल श्रम इन अवसरों की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, इसलिए बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाना बच्चों की उज्जवल भविष्य और सशक्त व्यक्तित्व की नींव रखना है। और बहनों, जब बात हो रही है व्यक्तित्व की, कि बच्चों का व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है, इसी विषय पर हमने बात की श्री विकास जी से। आइए सुनते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हम कैसे करें, इस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं। नमस्कार विकास जी।
1: नमस्कार जी।
0: आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए सर्वप्रथम क्या प्रयास करने चाहिए?
1: देखिए, शिक्षण भले ही स्कूलों के जिम्मे है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण घर की पाठशाला में ही होता है। घर को एक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अगर हमको भावी पीढ़ी को अच्छा बनाना है, माता को अपना स्वभाव, पिता को अपना स्वभाव, घर वालों को अपना स्वभाव, काम करने का ढंग, घर की व्यवस्था तथा वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि गीली मिट्टी के तरीके से बने हुए बालक ढांचे में ढलते हुए चले जाएं।
0: बहुत सही, उत्तम जवाब दिया आपने। भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मुख्य प्रयास क्या होने चाहिए?
1: देखिए, हमारे जीवन के प्राथमिक वर्ष हमारे भावी जीवन की नींव है।

0: नींव अगर कमजोर बनी रही तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती, तब इमारत खराब हो जाएगी, इमारत टूट फूट जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। अगर हमारे भावी जीवन की इमारत जो हमने सुंदर सपने के रूप में संजो कर रखी है, अगर उसकी जड़ छोटी उम्र में विद्यार्थी जीवन से ठीक तरीके से संभाल कर नहीं रखी गई तो हमारी बेहतरीन इमारत नहीं बन सकती और हम खराब जिंदगी जिएंगे।
1: पहले समय में माता पिता बच्चों को बहुत कठोर अनुशासन में रखा करते थे और आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चों को कुछ ज्यादा ही आज़ादी दी जा रही है, तो आपके विचार से आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए अनुशासन कितना आवश्यक है?
0: बच्चों के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी उम्र में अनुशासन नहीं सीख सका, जिसने अनुशासन का पालन नहीं किया, वो कभी किसी आदमी को अनुशासन में नहीं रख सकता। अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। जो अच्छा शिष्य नहीं रहा, जो बुरा शिष्य रहा है, जो अपने अध्यापकों से लड़ता झगड़ता रहा और अपने अध्यापकों की अवज्ञा करता रहा, कभी भी उसको भावी जीवन में यह मौका नहीं मिल सकता कि अगर उसको अध्यापक बनने के लिए मौका दिया जाए तो उसके बच्चे कहना माने। जो बुरा लड़का रहा है वो अच्छा बाप नहीं बन सकता और उसके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। ये अनुशासन छोटी उम्र में ही सीखना पड़ता है।
1: हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा प्राप्त कराएं और इसके लिए वो दिन रात प्रयासरत भी रहते हैं, तो बच्चों को उत्तम शिक्षा दी जा सके इसमें किस व्यक्ति का कितना योगदान होना चाहिए?
0: देखो, शिक्षा में अगर योगदान पर चर्चा की जाए तो शिक्षा तीन अंगों में बटी हुई है। सबसे पहले अभिभावक, जिनका काम है ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिनसे बालकों को ठीक तरीके से विकास हो सके। और दूसरा नंबर आता है अध्यापक का, अपने शिक्षण के साथ साथ अपना स्कूली पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ बालकों को वे बातें भी सिखाएं जो उनके जीवन में विकास के लिए आवश्यक हैं। और तीसरा नंबर आता है बच्चों का, कि बच्चा स्वयं कितना जागरूक है अपनी शिक्षा के प्रति। अगर बच्चा जागरूक होगा तो उसमें लगन होगी शिक्षा के प्रति और वो बच्चा भविष्य अपना उज्जवल कर पाएगा।
1: पहले अक्सर यही कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो वर्तमान समय में ये जो वाक्य था वो कितना प्रासंगिक है कि विद्यार्थियों के लिए खेलकूद कितना आवश्यक, आप प्रकाश डालिए।
0: देखिए, खेलकूद बहुत आवश्यक है, केवल पढ़ाई से ही कार्य नहीं चलेगा, खेलकूद बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि बच्चे कौन सा खेल खेलें। खेलकूद से बच्चों का शारीरिक विकास होता है, इसलिए ये चयन बहुत आवश्यक है कि कौन सा खेल बच्चे खेलें। उनको वो खेल खेलना है जिसमें उनका शारीरिक विकास हो पाए, जैसे क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, इन खेलों से व्यायाम भी होता है।
1: आजकल बच्चे ऑनलाइन गेमिंग बहुत खेलते हैं, मोबाइल पर ही ज्यादा दिखते हैं और खेल के मैदान में या पार्क में वो लोग कम दिखते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मोबाइल में खेले जाने वाले खेल को मैं खेल नहीं मानता, क्योंकि उसमें शारीरिक विकास नहीं होता है बल्कि आंखें खराब होती हैं, मानसिक रूप से बच्चा कमजोर होता है मोबाइल के संपर्क में ज़्यादा आने से। इसलिए वही खेल खेलने चाहिए जो मैदान में खेले जा सकें, जिनसे शारीरिक विकास हो।
1: तो भैया, अभी आपने जाना कि किस तरह से बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। फिलहाल जुड़ी रहेगा हमारे साथ और लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मैनो अब समय है काव्य पाठ का और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं पद्मावती बघेल से काव्य पाठ संघर्षों से सामना।
3: जिंदगी संघर्ष का नाम है और संघर्ष नहीं है तो जिंदगी नहीं है। संघर्ष हमें मजबूत करने के लिए आते हैं, तो जीवन में संघर्षों का स्वागत कीजिए और जीवन को अनमोल बनाइए। तो पेश करती हूँ संघर्षों से सामना अपनी रचना, तो सुनिए और आनंद लीजिए। जी

0: धन्यवाद।
1: जी हाँ बहनों, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान भी संघर्षों से गुजरकर अपने व्यक्तित्व को निखारता है। चुनौतियां हमें रोकने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। अभी आप सुन रहे थे पद्मावती बघेल से ये काव्य पाठ, संघर्षों से सामना। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, जुड़ी रहिएगा हमारे साथ।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: वेलकम बैक बहनों, आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार अपनी होस्ट वंदना तुली के साथ। बहनों, कहते हैं समंदर भी बूंद बूंद पानी से भरता है और ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का सुंदर परिणाम होती है। जब हम अपने सपनों को छोटे लक्ष्यों में बांटकर उन्हें पूरा करने की दिशा में बढ़ते हैं तो राह आसान और मंजिल करीब लगने लगती है। अक्सर हम अपने लिए बहुत बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे एकदम से फिट होना, किसी परीक्षा में टॉप करना या अपने करियर में ऊंचाइयां हासिल करना। लेकिन जब रास्ता लंबा लगता है तो उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। और बहनों, सफल लोग हमें यही सिखाते हैं कि बड़ी उपलब्धियों को छोटे छोटे चरणों में बांट देना चाहिए। जैसे यदि कोई महिला अपना छोटा सा घरेलू व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो पहले एक उत्पाद से शुरुआत कर सकती है और धीरे धीरे अपने काम का विस्तार कर सकती है। छोटे लक्ष्य हमें आत्मविश्वास देते हैं। महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए रोजाना छोटे छोटे प्रयास करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम छोटे छोटे लक्ष्यों की ताकत को समझना चाहें तो किरण बेदी का जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने एक दिन में देश की पहली महिला IPS अधिकारी बनने का मुकाम हासिल नहीं किया था। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन, खेलों में अनुशासन और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते छोटे छोटे कदमों ने उन्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया। और बहनों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम निरंतर छोटे प्रयास करते रहते हैं तो बड़ी से बड़ी सफलता भी हमारे कदम चूमती है। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि एक ही कदम बढ़ाते हुए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और यहीं से हमारी पहचान भी बनती है। तो बहनों, इसी सकारात्मक सोच को हमेशा बनाए रखिए। और अब बात करते हैं फैशन ब्यूटी की। बहनों, कपड़े सिर्फ हमारी खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पसंद और हमारी पहचान को भी दर्शाते हैं। बदलते फैशन के दौर में भी कुछ परिधान ऐसे हैं जिनकी सादगी और गरिमा हमेशा दिलों पर राज करती है। इन्हीं में से एक है पारंपरिक कॉटन साड़ी। कॉटन साड़ी यानी आराम, एलिगेंस और परंपरा का खूबसूरत संगम। गर्मियों के मौसम में इसकी हल्की और मुलायम बनावट शरीर को ठंडक देती है। वहीं इसके रंग और डिजाइन पहनने वाले व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण जोड़ देते हैं। चाहे चंदेरी की नाजुक बुनाई हो, कांजीपुरम की पारंपरिक छटा हो या ढाका की मशहूर मलमल की विरासत, हर साड़ी अपने साथ एक कहानी लेकर चलती है। आज की महिलाएं कॉटन साड़ी को सिर्फ पारंपरिक अवसरों पर ही नहीं, बल्कि ऑफिस मीटिंग्स और कैजुअल आउटिंग्स में भी स्टाइल कर रही हैं। एक सुंदर ब्लाउज, हल्के गहने, छोटी सी बिंदी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, इतना ही काफी है एक खूबसूरत और ग्रेसफुल लुक के लिए। और बहनों, अगर आप कॉटन साड़ी को मॉडर्न टच देना चाहती हैं तो इसके साथ कंट्रास्ट ब्लाउज, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, बेल स्टाइल ड्रैप भी अच्छा लगता है। याद रखिए, सादगी भी अपने आप में एक स्टेटमेंट फैशन है। और अगर भारत के अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर कॉटन साड़ियों की अपनी अलग पहचान है। कोटा की कोटा डोरिया साड़ियां अपनी महीन चौखानेदार बुनाई और नजाकत के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदेरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट, पारदर्शी चमक और खूबसूरत बुनाई के लिए जानी जाती हैं। तो बहनों, अगली बार जब आप अपनी अलमारी में रखी कॉटन साड़ी को देखें तो उसे सिर्फ एक कपड़ा ना समझें। उसमें छिपी है हमारी संस्कृति की खुशबू, कारीगरों की मेहनत और भारतीय नारी की सहज सुंदरता। बहनों, भारतीय परंपरा और नारी सौंदर्य की बात हो और संगीत की मिठास ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो भारतीय संस्कृति के रंगों को महसूस कराता है।

मैनू, अब चलते चलते रेसिपी टाइम है। चलिए, अब आपको आज हम बताते हैं कि क्या बनाया जाए। तो उठाइए अपनी पेन और डायरी और लिख लीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैंगो श्रीखंड बनाने की विधि। क्योंकि देखिए ना कि गर्मियों का मौसम है और आजकल बाजार में आम की भी भरमार है, तो आम की मिठाई शरीर को ठंडक देती है और खाने के बाद एक ताजगी भरा अनुभव देती है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप गाढ़ा दही, आधा कप आम का गूदा, 2-3 बड़े चम्मच पीसी चीनी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, कुछ केसर के धागे और सजावट के लिए बादाम और पिस्ता। तो बहनों, मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए गाढ़े दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लें और इसमें आम का गूदा, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर चिकना मिश्रण तैयार करें। और यदि चाहें तो केसर को थोड़े से दूध में भिगोकर मिश्रण में मिला सकते हैं। तैयार श्रीखंड को 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने रखें और इसके बाद कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाकर परोसें। बहनों, दही इस मिठाई को मलाईदार बनाता है, जबकि आम का गूदा प्राकृतिक मिठास और आकर्षक रंग प्रदान करता है और इसकी ठंडी ठंडी मिठास गर्मियों में विशेष आनंद देती है। तो बहनों, इस बार इन गर्मियों में आम के मैंगो शेक या मैंगो आइसक्रीम के अलावा इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय भी यहीं समाप्त हुआ जा रहा है। अपनी रेडियो सखी वंदना तुली को आज्ञा दीजिए, फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। महिलाएं सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर संसार। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें सुनिए मयंका अग्रवाल की आवाज में गीत और भजन। सबसे पहले सुनिए ये गीत जिसके बोल हैं वंदना के इन सुरों में।

डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना वंदना के इन स्वरों में। आवाज थी मयंका अग्रवाल की। आइए सुनते हैं अब अगली प्रस्तुति आप ही के स्वर में। बोल है मुझको प्रकाश दे दो।

चरण कमल बंदो हरिराई, मयंका अग्रवाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

0: in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार।

0: स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत

औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय

0: की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए आप सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें सुने पंडित भोलानाथ का बांसुरी वादन राग मिश्र पीलू में।

पंडित भोलानाथ का बांसुरी वादन अभी आप सुन रहे थे राग मिश्र पीलू में, और आप सुनिए रविशंकर पंडित का सितार वादन, राग है पटदीप।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रविशंकर पंडित का सितार वादन राग पटदीप में। दोपहरकालीन सभा के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: मेरी बस कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की। ये

0: के हाथ से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

छोटी बहन मुकेश और साथियों की आवाज में हसरत जयपुरी की लिखी हुई इस रचना को आपने सुना शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। अगली पेशकश सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है हमसाया, संगीत है ओपी नैयर का और लिखा है इसे शैवान रिजवी ने।

लता मंगेशकर के स्वर में। मजरू के लिखे हुए बोलों को अभी आपने सुना आर डी बर्मन के संगीत के साथ। ये गीत हमने लिया था फिल्म बहारों के सपने से। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

0: रेडियो 106.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम अंजुमन में सुनिए सबसे पहले मकाला मोहब्बत इंसानियत और यादों के शायर बशीर बद्र। मकाला निगार है फरहा शाहिद।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उर्दू अदब की तारीख में बास शख्सियात ऐसी होती हैं जो महज एक शायर अदीब या दानिश्वर नहीं रहती बल्कि अपने अहद की अलामत बन जाती हैं। उनके नाम के साथ एक पूरा ज़माना, एक तहजीब, एक एहसास और एक अदबी रिवायत वाबस्ता हो जाती है। डॉक्टर बशीर बद्र भी ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे। उनकी वफात की खबर उर्दू दुनिया के लिए महज एक अदीब के इंतकाल की खबर नहीं बल्कि एक पूरे अहद के इख्तिताम का ऐलान है। यूं महसूस होता है जैसे दयारे गज़ल का एक रोशन मीनार अचानक बुझ गया हो और अदब के उफक पर एक ऐसा खिला पैदा हो गया हो जिसे पुर करना आसान नहीं। डॉक्टर बशीर बद्र अपने ज़माने के

शहंशाह गजल थे। शोहरत की वो लाजवाल बुलंदी उन्हें नसीब हुई जो हर साहिब कलम का मुकद्दर नहीं होती। उर्दू शायरी में मकबूलियत के एतबार से अगर किसी शायर को कुतुब मीनार से तशबीह दी जा सकती है तो वो बिलाशुबा बशीर बद्र थे। उनकी शायरी एहसास की उस रोशनी का नाम है जहाँ लफ्ज़ दिल की धड़कन बन जाते हैं। उन्होंने उर्दू गज़ल को नई खुशबू, मोहब्बत को लतीफ़ लहजा, तन्हाई को खामोश ज़बान और यादों को ऐसे उजाले बख्शे कि हर शख्स उनमें अपनी कहानी तलाश करने लगा। बशीर बद्र की शायरी में उदासी भी है, जुदाई का कर्ब भी और उम्मीद की रोशन शमा भी। उनके अल्फाज एक ऐसा आईना हैं जहां उदासी, जुदाई और तन्हाई का चेहरा और बदलते हुए माशरे की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। बशीर बद्र का असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। उनकी पैदाइश 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले के करीब एक छोटे से गांव बकिया में हुई। बचपन ही से उन्हें अदब और मुतायले का शौक़ था। बाद में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की और उर्दू अदब के उस्ताद के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बचपन से ही उन्हें शायरी से गहरा शगफ था और कम उम्री में ही उनकी गज़लें मुख्तलिफ रसाइल में शाये होने लगीं। ज़िंदगी के इब्तदाई दौर से ही जिम्मेदारियां उनके साथ चलती रहीं। वालिद के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। मुलाजिमत भी करनी पड़ी लेकिन उन्होंने तालीम और तख्लीक दोनों को साथ रखा। इन सब मसरूफियात के बावजूद उन्होंने PhD भी मुकम्मल की और AMU में दर्स व तदरीस के ओहदे पर फाइज हो गए। उनकी ज़िंदगी में कई तल्ख तजुर्बात भी आए और उनमें से एक था उनकी अहलिया के बिछड़ने का सदमा। जिस वक्त मेरठ में उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ तो वो बैरून हिंद थे। वो उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सके। अपनी अहलिया के इंतकाल पर उन्होंने कहा था, कभी बरसात में भी शादाब बेलें सूख जाती हैं, कभी बरसात में भी शादाब बेलें सूख जाती हैं, हरे पत्तों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उर्दू गज़ल के तवील और शानदार सफ़र में बशीर बद्र ने एक मुनफरिद मकाम बनाया। उन्होंने गज़ल को रिवायती मौजूआत तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे रोज़मर्रा ज़िंदगी, इंसानी रिश्तों, बदलते समाज और आम एहसास से जोड़ दिया। उनकी शायरी में जदीद एहसास भी है और क्लासिकी रिवायत का हुस्न भी। उनके शेरी असलूब की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी, रवानी और बेसाख्तगी है। वो पेचीदा अलामतों और भारी भरकम अल्फाज के बजाय सादा और आम फहम ज़बान में गहरे जज्बात बयान करते हैं। उनका ये शेर इस बात की अक्कासी बखूबी करता है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। बशीर बद्र की शायरी का मरकजी मौजू मोहब्बत था लेकिन उनकी मोहब्बत सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं थी। उनकी शायरी इंसानियत, रवादारी और दिलों को जोड़ने का पैगाम देती है। उनका मशहूर शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इस शेर में शायर हमें इस बात की तालीम देता है कि लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फैसला लेने से पहले उनके हालात को भी समझना और देखना चाहिए। उनके कलाम का एक वस्फ ये भी है, और ऐसा महसूस होता है जैसे शायर कारी से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा हो। यही मकालमाती कैफियत उनके अशार को फौरी तौर पर दिल में उतार देती है। वो कहते हैं, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। उनके अशार सिर्फ अपने मुल्क तक ही महदूद नहीं थे, तमाम आलम के लोग अपने जज्बात के इजहार के लिए उनका इस्तेमाल करने में फख्र महसूस करते थे। पाकिस्तानी वजीर आजम जुल्फ़ार अली भुट्टो ने 1972 में आनजहानी वजीर आजम इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौते पर दस्तखत करते हुए उन्हें बशीर बद्र का ये शेर सुनाया था, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। 1987 के मेरठ के फ़िरकावाराना फसादात ने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, जिसमें फसादियों ने उनके घर, किताबों और अवार्ड्स गर्स उनकी ज़िंदगी के कुल असासे को नज़र आतिश कर दिया। इसका उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस गहरे ज़ख्म की गूंज उनके मशहूर शेर में महसूस की जा सकती है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। घर से बेघर होने के बाद बशीर बद्र ने अपने हौसलों को मुश्तमा किया और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की और वो दिल्ली आ गए और फिर यहाँ से भोपाल मुंतकिल हो गए। वहाँ उनकी दूसरी शादी हुई और डॉक्टर राहत बद्र उनकी दूसरी शरीके सफ़र बनी। वो कहते हैं, मैं तेरे साथ सितारों से भी गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। एक और जगह वो कहते हैं, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। उर्दू गज़ल में बशीर बद्र का मुकाम जदीद गज़ल के उन शुरा में नुमाया है जिन्होंने उसे अवामी सतह तक पहुंचाया। इनसे पहले गज़ल ज़्यादातर अदबी हलकों तक महदूद थी मगर उन्होंने

0: उसे आम कारी और नई नस्ल के लिए काबिल रसाई बनाया। उनके अशार महफिलों, मुशायरों और रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन गए। यही उनकी मकबूलियत का सबसे बड़ा राज है। उनकी तसानीफ में कई अहम शेरी मजमू शामिल हैं। उनके नुमाया मजमुओं में इकाई, इमेज, आमद, आस, आहट खास तौर पर अहम हैं। इसके अलावा उनकी कुलियात भी शाये हो चुकी हैं, जिसमें उनका शेरी सरमाया यकजा किया गया है। इन मजमुओं में जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात, एहसासात और इंसानी कैफियात की भरपूर झलक मिलती है। बशीर बद्र की शायरी में गांव की सादगी भी है और शहर की पेचीदा जिंदगी भी। वो छोटे छोटे तजुर्बात को बड़े शेरी मफहूम में ढाल देते हैं। वो कहते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। एक और जगह वो कहते हैं, जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। उनके अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1999 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा। वो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन भी रहे और उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग के लिए मुसलसल सरगर्म रहे। हमारे अहद का अलमिया यह है कि जब तक कोई शख्स सरगर्म और मुतहरिक रहता है, तभी तक लोग उसे याद रखते हैं, और जब वो किसी बीमारी या आज़ारी की वजह से नज़रों से ओझल हो जाता है तो लोग उसे फरामोश कर देते हैं। बशीर बद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक वो शोहरत की बुलंदियों पर रहे, लोग उन पर दादो तहसीन की बारिश करते रहे, और जूं ही बीमारी की वजह से वो साहिब फराश हुए तो लोगों ने उनको भुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने न जाने किस हाल में ये शेर कहा था जो आज सच साबित हुआ, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। 12 साल पहले जब उन पर डिमेंशिया का अटैक हुआ तो वो शोहरत की बुलंदियों पर थे। ये शोहरत उन्हें अपनी सहल और आम फहम शायरी के तवस्सुत से हासिल हुई थी। डिमेंशिया के अटैक के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूलते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें अपने वो अशार भी याद नहीं रहे जिनके सहारे उन्होंने बरसों उर्दू शायरी के दीवानों को सैराब किया था। बशीर बद्र की याददाश्त ख़त्म हो चुकी थी और वो एक जिस्म की सूरत में जिंदा थे। शायद इसीलिए उनके चाहने वालों ने उनको फरामोश कर दिया था। 28 मई ईद-उज़ुहा के दिन जब लोग अपने घरों में ईद-ए-क़ुर्बान की खुशियां मनाने में मसरूफ़ थे, उसी दोपहर को बशीर बद्र अपने मालिक हकीकी से जा मिले और पूरे आलम में गम का माहौल छा गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सर से अजीम साया छिन गया हो। उन पर यह शेर सादिक आता है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।
1: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन में अभी आप सुन रहे थे मकाला मोहब्बत, इंसानियत और यादों के शायर बशीर बद्र। मकाला निगार थी फरहा शाहिद। कलामी शायर में आप सुने जावेद कमर को।
2: मतलब मुलाइजा फरमाए, फिराको वसल के लम्हात एक जैसे थे, फिराको वसल के लम्हात एक जैसे थे, ये कैसे कह दूं कि जज्बात एक जैसे थे। फिराको वसल के लम्हात एक जैसे थे, ये कैसे कह दूं कि जज्बात एक जैसे थे। शेर देखें कि करार उनको ना था बेकरार था मैं भी, करार उनको न था बेकरार था मैं भी, कि रात दोनों के हालात एक जैसे थे, कि रात दोनों के हालात एक जैसे थे। और तलाश अपनी मैं मंजिल को किस तरह करता, तलाश अपनी मैं मंजिल को किस तरह करता, कि मंजिलों के निशानात एक जैसे थे। तलाश अपनी मैं मंजिल को किस तरह करता, कि मंजिलों के निशानात एक जैसे थे। न दिन में चैन था उनको न रात में था सुकून, न दिन में चैन था उनको न रात में था सुकून, अलम नसीबों के दिन रात एक जैसे थे, अलम नसीबों के दिन रात एक जैसे थे। सभी थे दर्द में डूबे सभी थे बोशीदा, सभी थे दर्द में डूबे सभी थे बोशीदा, किताबे जीस्त के सफहात एक जैसे थे। सभी थे दर्द में डूबे सभी थे बोशीदा, किताबे जीस्त के सफहात एक जैसे थे।

और ये गजल का एक शेर समाप्त फरमाए। माना के तेरे इश्क में पागल नहीं हुआ, शेर देखें, माना के तेरे इश्क में पागल नहीं हुआ, गाफिल में गाफिल मगर मैं तुझसे किसी पल नहीं हुआ। माना के तेरे इश्क में पागल नहीं हुआ, गाफिल मगर मैं तुझसे किसी पल नहीं हुआ, और हल हल करके वो सवाल भी तेरे दिखाऊंगा, हल करके वो सवाल भी तेरे दिखाऊंगा, जो जिंदगी सवाल तेरा हल नहीं हुआ। हल करके वो सवाल भी तेरा दिखाऊंगा, ऐ जिंदगी सवाल तेरा, ऐ जिंदगी सवाल तेरा हल नहीं हुआ। और शामो सहर है, शामो सहर जो रोते हैं रोना नसीब का, शामो सहर जो रोते हैं रोना नसीब का, जीवन में उनका आज कभी कल नहीं हुआ। और एक गजल के चंद शेर समाप्त फरमाए के, जाना था जिसको कीमती गौहर समेट कर, जाना था जिसको कीमती गौहर समेट कर, दरिया से जा रहा है वो पत्थर समेट कर, जाना था जिसको कीमती गौहर समेट कर, दरिया से जा रहा है वो पत्थर समेट कर, और सहरा की समत देखो ये जा रहा है कौन, सहरा की समत देखो तो ये जा रहा है कौन, नजरों में गुलसितान के मंजर समेट कर, सहरा की समत देखो तो ये जा रहा है कौन, नजरों में गुलसितान के मंजर समेट कर, और पड़ता है शाम को उसी बिस्तर को खोलना, पड़ता है शाम को उसी बिस्तर को खोलना, रख देते हैं जो सुबह को बिस्तर समेट कर, पड़ता है शाम को उसी बिस्तर को खोलना, रख देते हैं जो सुबह को बिस्तर समेट कर, और परवाज जिन परिंदों की छूती थी आसमान, परवाज जिन परिंदों की छूती थी आसमान, बैठे हुए हैं आज वही पर समेट कर, और परवाज जिन परिंदों की छूती थी आसमान, बैठे हुए हैं आज वही पर समेट कर, ये तो कलंदरों का है कूचा यहाँ से तू, ये तो कलंदरों का है कूचा यहाँ से तू, ले जा ये अपना माल तवंगर समेट कर, ये तो कलंदरों का है कूचा यहाँ से तू, ले जा ये अपना माल तवंगर समेट कर, जो ज़ादे राह काफले वालों के पास था, जो ज़ादे राह काफले वालों के साथ पास था, कब का उसे तो ले गया रहबर समेट कर, जो ज़ादे राह काफले वालों के पास था, कब का उसे तो ले गया रहबर समेट कर। और ये शेर देखें मक्ते का, के कर एक शेर में दुनिया के गम कमर, कर एक शेर में रकम दुनिया के गम कमर, कूजे में तू दिखा दे समंदर समेट कर, कर एक शेर में रकम दुनिया के गम कमर, कूजे में तू दिखा दे समंदर समेट कर। और ये शेर देखेंगे एक गजल के चंद अशार, और ये कैसे कहें आपके दीदार को तरसे, ये कैसे कहें आपके दीदार को तरसे, आए हो नजर आप ही गुजरे हैं जिधर से, ये कैसे कहें आपके दीदार को तरसे, आए हो नजर आप ही गुजरे हैं जिधर से, और कुछ तेरी खबर आती नहीं तेरे नगर से, कुछ तेरी खबर आती नहीं तेरे नगर से, कोई तो खबर आए इधर से या उधर से, कोई तो खबर आए इधर से या उधर से, आएंगे ना फिर लौट के तुम ये भी समझ लो, आएंगे ना फिर लौट के तुम ये भी समझ लो, उठने को तो उठ जाएंगे हम आपके दर से, आएंगे ना फिर लौट के तुम ये भी समझ लो, उठने को तो उठ जाएंगे हम आपके दर से, और हालांकि वो बारिश का ज़माना तो नहीं था, हालांकि वो बारिश का ज़माना तो नहीं था, आंसू मेरी आंखों से तेरी याद में बरसे, हालांकि वो बारिश का ज़माना तो नहीं था,

आंसू मेरी आंखों से तेरी याद में बरसे, और इतना तो करम कर दे मेरी जाने तमन्ना, इतना तो करम कर दे मेरी जाने तमन्ना, एक बार जरा देख ले उल्फत की नजर से, इतना तो करम कर दे मेरी जाने तमन्ना, एक बार जरा देख ले उल्फत की नजर से, और रुख से तू निकाब अपने उलट दे तो जो मसीहा, रुख से तू नकाब अपने उलट दे जो मसीहा, बीमार जिला पाए तेरे देखने भर से, रुख से तू निकाब अपने उलट दे जो मसीहा, बीमार जिला पाए तेरे देखने भर से, और जो तूने दिए जख्म भरा अब भी नहीं है, जो तूने दिया जख्म भरा अब भी नहीं है, जो तूने दिया जख्म भरा अब भी नहीं है, अब तक है लहू जारी मेरे जख्म जिगर से, अब तक है लहू जारी

जो तूने दिया जख्म भरा अब भी नहीं है, जो तूने दिया जख्म भरा अब भी नहीं है, अब तक है लहू जारी मेरे जख्म जिगर से, अब तक है लहू जारी मेरे जख्म जिगर से। ये मक्ते का शेर देखें कि क्यों छोड़ के आया है सितारों की वो महफिल, क्यों छोड़ के वो आया है सितारों की वो महफिल, क्यों छोड़ के आया है सितारों की वो महफिल, इतना तो कोई पूछे ज़रा जाके कमर से, इतना तो कोई पूछे ज़रा जाके कमर से। और ये गज़ल के चंद अशआर और देखें, मतला है कि गम तूने कहाँ गर्दिशे अय्याम तराशे, गम तूने कहाँ गर्दिशे अय्याम तराशे, खुद मैंने ही अपने लिए आलाम तराशे, गम तूने कहाँ गर्दिशे अय्याम तराशे, खुद मैंने ही अपने लिए आलाम तराशे। ये तेरा अगर काम नहीं अमन के दाई, ये तेरा अगर काम नहीं अमन के दाई, फिर किसने है बस्ती में ये कोहराम तराशे, ये तेरा अगर काम नहीं अमन के दाई, फिर किसने है बस्ती में ये कोहराम तराशे। और ये शेर देखें कि बुत मुझसे ना बन पाया कोई तेरी तरह का, बुत मुझसे ना बन पाया कोई तेरी तरह का, हर चंद के मैंने कई असनाम तराशे, बुत मुझसे ना बन पाया कोई तेरी तरह का, हर चंद के मैंने कई असनाम तराशे। शेर देखें कि कौसार में आबाद नए शहर किए हैं, कौसार में आबाद नए शहर किए हैं, हमने ही चट्टानों में दरो बाम तराशे, कौसार में आबाद नए शहर किए हैं, हमने ही चट्टानों में दरो बाम तराशे। है तेरी तरफ मेरी नज़र अब भी सितमगर, है तेरी तरफ मेरी नज़र अब भी सितमगर, पैकर है तेरा ये दिले नाकाम तराशे, है तेरी तरफ मेरी नज़र अब भी सितमगर, पैकर है तेरा ये दिले नाकाम तराशे। और ये शेर बतौर खास के, कहती है गुनाहगार तुझे इसमें अजब क्या, कहती है गुनाहगार तुझे इसमें अजब क्या, दुनिया ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे, कहती है गुनाहगार तुझे इसमें अजब क्या, दुनिया ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। और ये मक्ते का शेर देखें, आखिरी शेर, ये आलमे मस्ती में किया काम कमर ने, ये आलमे मस्ती में किया काम कमर ने, मैखाने की मिट्टी से नए जाम तराशे, ये आलमे मस्ती में किया काम कमर ने, मैखाने की मिट्टी से नए जाम तराशे। और ये गज़ल के चंद अशआर और मतलब समाप्त फरमाए कि कैसे सुनेंगे आप वो कानों से गुफ्तगू, कैसे सुनेंगे आप वो कानों से गुफ्तगू, करते हैं अहले इश्क तो आँखों से गुफ्तगू, कैसे सुनेंगे आप वो कानों से गुफ्तगू, करते हैं अहले इश्क तो आँखों से गुफ्तगू, और दौलत ने उसका रख दिया लहजा बिगाड़ कर, दौलत ने उसका रख दिया लहजा बिगाड़ कर, करता नहीं वो ठीक से अपनों से गुफ्तगू, दौलत ने उसका रख दिया लहजा बिगाड़ कर, करता नहीं वो ठीक से अपनों से गुफ्तगू, और जो राज हैं तुम्हारे न खुल जाएं वो कहीं, जो राज हैं तुम्हारे न खुल जाएं वो कहीं, करना समझ के सोच के गैरों से गुफ्तगू, जो राज हैं तुम्हारे न खुल जाएं वो कहीं, करना समझ के सोच के लोगों से गुफ्तगू, और तेरे ख्याल तेरे तसव्वुर में डूब कर, तेरे ख्याल तेरे तसव्वुर में डूब कर, हर रात मैंने की है चरागों से गुफ्तगू, तेरे ख्याल तेरे तसव्वुर में डूब कर, हर रात मैंने की है चरागों से गुफ्तगू, और पाया ना कोई तर्ज़े तकल्लुम में आप सा, पाया ना कोई तर्ज़े तकल्लुम में आप सा, हम कर चुके हैं यूं तो हज़ारों से गुफ्तगू, पाया ना कोई तर्ज़े तकल्लुम में आप सा, हम कर चुके हैं यूं तो हज़ारों से गुफ्तगू, और बेइल्म है जो उनको किताबों से काम क्या, बेइल्म है जो उनको किताबों से काम क्या, बेइल्म है जो उनको किताबों से काम क्या, करते हैं अहले इल्म किताबों से गुफ्तगू, करते हैं अहले इल्म किताबों से गुफ्तगू। और ये मक्ते

0: शेर और रसवाइयों के खौफ से महफिल में ऐ कमर, रसवाइयों के खौफ से महफिल में ऐ कमर, करता है कोई मुझसे इशारों में गुफ्तगू, करता है कोई मुझसे इशारों में गुफ्तगू, करता है कोई मुझसे इशारों से गुफ्तगू।
1: कलाम शायर में अभी आप सुन रहे थे जावेद कमर को, और अब सुनिए अफसाना मुकम्मल नामुकम्मल। अफसाना निगार है शहनाज खातून।
2: कलाइयों में भरी चूड़ियां खनकने के लिए और होंठों के मधुर गीत मदहोश करने के लिए बरसों से बेताब थे, मगर उसकी जिंदगी में सब कुछ जू का तू था। आम से भरी हुई टोकरियां उठा उठा कर सलीके से ठेले पर रख कर अमीन सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया। रोज की तरह उस दिन भी मुबीना ने झाड़ियों के पीछे बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और रस्सियों में बल डालने में मसरूफ हो गई। फिर न जाने कब उसकी सुरेली आवाज में डूबा हुआ मिसरा कहाँ से ढूंढ के लाऊं, करार का मौसम सुनसान फिजाओं को मदहोश करने लगा। झाड़ियों के पीछे उसे सरसराहट महसूस हुई। अरे कौन है भैया, अंगूठे में दबी हुई रस्सी छोड़कर वो खड़ी हो गई। कौन है भैया, बोलते काहे नहीं। तब तक फुनकारता हुआ काला सांप आकर रस्सियों के बंडल में लिपट गया। वो हवास बाख्ता होकर चिल्लाने लगी, चंद कदम पर लेटे हुए अमीन को आवाजें देने लगी। भागने की कोशिश की तो दुपट्टा झाड़ में फंस गया और वो गिर गई। कलाइयों में भरी चूड़ियां छनाके से टूटकर कलाइयों को जख्मी कर गईं। गोशे समाज से महरूम अमीन अपने इर्द गिर्द की आहटों और बीवी की चीखों पुकार से बेनियाज लेटा रहा। झाड़ियों के पीछे फिर सरसराहट की आवाज आई और एक उम्मीद जागी। भैया कौन है यहाँ, खुदा के लिए मुझे बचा लो, एक नौजवान झाड़ियों के पीछे से नमूदार हुआ। उसके हाथ में मोटी लकड़ी थी। जैसे ही लकड़ी से सांप को मारना चाहा, वो तेजी से करीब ही एक सुराख में घुस गया। उस नौजवान ने साइड बैग से पानी का बोतल निकाल कर दिया। आप मुतमईन हो जाएं, सांप चला गया, खुदा का शुक्र है मैं करीब ही था, वरना। हाँ भैया आप ना आते तो, और वो फूट फूट कर रोने लगी। जब मुबीना की हालत थोड़ी बेहतर हो गई तो उसने नौजवान का शुक्रिया अदा किया। आप यहाँ काहे लिए आते हो भैया, मेरा नाम शादाब है, मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ। ये क्या होता है? ओह मैं पेंट करके तस्वीरें बनाता हूँ, कई रोज़ से मैं यहाँ पेंटिंग के लिए आ रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है। मुबीना को उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसे इस फन के बारे में कोई मालूमात नहीं थी कि कोई सवाल करे या मजीद तारीफ कर दे। मुझे लगता था कि मैं इस वीराने में अकेला हूँ, लेकिन आज किसी की गाने की आवाज़ सुनी तो उसके ताकुब में इधर उधर नजरें दौड़ाई, थोड़ी दूर आया भी मगर फिर वापस चला गया। शादाब की बात सुनकर मुबीना ने कहा, माफ़ करना बाबू हम गा ही रहे थे, हमें क्या मालूम कि आप यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। अरे नहीं भाई आपकी आवाज़ तो, लड़खड़ाते हुए लहजे में शादाब ने कहा, आपकी आवाज़ तो समात में मिठास घोलने वाली है। तब तक झाड़ियों में पड़ी हुई पाजेब पर उसकी नज़र पड़ी। अरे उसके तो घुंघरू निकल गए हैं, आप इन्हें जुड़वा लीजिएगा, पाजेब को उठाते हुए शादाब ने कहा। चंद लम्हों के लिए मुबीना को अपनी ज़िंदगी काबिल रश्क मालूम होने लगी और बांसुरी की तेज़ लय उसके कानों में गूंजने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं। अमीन उसके लिए मौसमों की शिद्दत में तहफ़ुज़ का साया फराहम करने वाला था, मगर उस साये के अवज़ उसे बंदगी की तलब थी। लेकिन अबदियत तो दिल में होती है जो सरे नयाज को माबूद के सामने खम कर देती है। बरसों पहले अमीन की जागीर बनकर वो उसके घर आई थी। वहाँ सारी नेमतें मैसर थीं सिवाय उन नेमतों के जो उसकी फितरी ज़रूरत थीं। मुबीना ने वो सब कबूल कर लिया जो लोगों ने उसे दिया। वो अमीन को अपनाना चाहती थी, पूजना चाहती थी और ईमान लाना चाहती थी, मगर मुबीना को खामोश देखकर शादाब ने जाने की दरख्वास्त करते हुए कहा, मोहतरमा मैं चलता हूँ। मुबीना ने झटके से आंखें खोल दी। हाँ भैया हम भी जा रहे हैं, हमारे मियाँ हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाथ के इशारे से उसने अमीन को दिखाया जो कि अब नींद से बेदार हो चुका था। मुबीना की बात पर शादाब को हैरत हुई। झाड़ियों की वजह से वो अमीन को साफ तौर से नहीं देख सकता था, इसीलिए आगे बढ़ते हुए उसने कहा, अरे चलकर देखना चाहिए आपके शौहर को जो यहीं बैठे हुए हैं और आपकी चीखें ना सुन सके। मुबीना ने सख्ती से मना किया, आप उनसे नहीं मिल सकते। हाँ उन्होंने मेरी चीखें नहीं सुनी क्योंकि वो, और वो रस्सियों का बंडल उठाकर जानने लगी। जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। क्या बताएं मोहतरमा, क्या वो

0: वो क्या? शादाब ने उसकी मोमा खेज मुस्कुराहट और शरबती आंखों में उमड़ने वाले आंसुओं के कतरों को उसी लम्हे हौसलों के समंदर में तब्दील कर दिया। शाम के मंजर को हसीन और मोतबर बनाने वाली सुर्खी से पूरी फिजा रंगीन हो गई थी। देर से लौटने की वजह से अमीन अपने मखसूस इशारों से मुबीना को डांटने लगा। पेशानी पर बल डालते हुए एक हाथ झाड़ कर दूसरा हाथ हवा में नचाकर उसने घूर कर देखा तो मुबीना सहम सी गई। अमीन ने एक मोटे डंडे की तरफ इशारा करते हुए और हाथ की चार उंगलियों से सांप के फन की शक्ल बनाकर मुबीना को बताया कि सांप यहाँ आया था, मैंने उसे मार दिया। बताने के बाद वो दाद तलब नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। इस हादसे के बाद मुबीना ने इस जगह पर जाना छोड़ दिया। शादाब ने कई दिन तक मुबीना की बैठने वाली जगह के चक्कर लगाए। चंद हफ्तों बाद एक पेंटिंग शादाब ने बाग के मालिक को दी जिसमें एक लड़की जजीरे में खड़ी है, उसके पीछे लहराती बलखाती हुई मौजें बह रही हैं, लेकिन लड़की की नज़रें तूफानी मौजों से बेनियाज अपनी चूड़ियों पर मरकूज हैं। अमीन जब आम लेने के लिए बाग के मालिक के पास गया तो उसने पेंटिंग अमीन के हवाले कर दी। उसने देखे बगैर ही आम की टोकरी में रख ली। अरे ये तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए हैं आप? मुबीना ने देख कर कहा। अमीन के इशारे वो आज नहीं समझ सकी। अरे क्या कहना चाह रहे हैं आप, साफ साफ बताइए। तब भी अमीन के इशारे कुछ वाजह ना कर सके। ऐसा लग रहा था कि उसकी जबान की तरह उसके इशारे भी गूंग हो गए थे। दिल के तारों को छेड़ देने वाली गुनगुनाती आवाज, नीम खाबीदा आंखों को जगा देने वाली पाजेब की झनकार, समात को मुतवज्जा कर देने वाली चूड़ियों की खनखनाहट की अहमियत का अंदाजा उसे जिंदगी में पहली बार कब हुआ था। काश वो लम्हा ठहर जाता, उस लम्हे को अपनी मुट्ठी में ले सकती। अभी कल ही की तो बात है जब उसने, नहीं नहीं कल कहाँ, बल्कि कई रोज हो गए जब वो दीवार पर टकी हुई तस्वीर देखकर मुबीना यूं ही माजी करीब और माजी बईद के दरमियान मुअल्लक होकर रह जाती। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता कि वो शरशारी की आलम में दूसरी दुनिया में खो गई और गुजरते हुए वक्त की गिरफ्त से आज़ाद हो गई। तस्वीर के सामने खड़ी मुबीना को बेदार करने के लिए अमीन उसके करीब आकर कभी कभार उसके शाने पर हाथ रख देता और अपने आहनी वजूद से अपना लोहा मनवाना चाहता, जो सिर्फ उसके खालीपन के भरम को कायम रखने में मदद देता था। उसकी इस हरकत पर मुबीना चौक जरूर जाती थी और अपनी बेख्याली पर खिफत महसूस करते हुए खिसियानी सी हंसी हंस कर चली जाती, लेकिन ये खिफत सिर्फ चंद लम्हों के लिए होती।
1: अफसाना मुकम्मल नामुकम्मल। अभी आप सुन रहे थे अफसाना, निगार थी शहनाज खातून। इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अंजुमन अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यही समाप्त होता है। सायकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, सभा की शुरुआत में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में यह बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल

0: बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चयन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सबसे पहले जानकारी लीजिए इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर चर्चा होगी बाल श्रम का अभिशाप विषय पर। साथ ही आपको सुनवाएंगे वार्ता योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी रोगों का प्रबंधन। वार्ताकार होंगे अनिंद्र सिंह। नई पहल में बात करेंगे पीएम अजय योजना के बारे में। वैज्ञानिकी में बताएंगे स्काई कास्ट प्रणाली के विषय में। साथ ही आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम ग्राम्यालोक में चर्चा का विषय होगा पराधीन सपने सुख नाही। साथ ही आप सुनेंगे धर्मेंद्र सिंह की वार्ता, विषय होगा दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। इसके अलावा आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, मंडी भाव और कुछ लोकगीत। कार्यक्रम ग्राम्यालोक का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:00। 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनेंगे कानूनी वार्ता, उपभोक्ता अधिकार और जागरूकता विषय पर वार्ताकार होंगे किशन सिंह परमार। साथ ही आप सुनेंगे विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस पर चर्चा। इसके अलावा आपको सुनवाएंगे आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स, आज की पार्टी और कुछ फिल्मी गीत। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर केंद्रित वार्ता, बच्चों से बचपन मत छीनिए। वार्ताकार होंगी डॉ शुभा सिंह। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 7:31 पर। रात 8:00 आनंद लीजिएगा कार्यक्रम महफिल ए कव्वाली का। चित्रपट

संगीत आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम करंट अफेयर्स। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे रमेश तागड़े का वायलिन वादन रात 10:30 पर।

और अब सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान का संगीत में प्रसारण सुना जा सकेगा प्रातः 6:35 पर। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 6:25। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्प्रिंकलर सिंचाई प्रबंधन विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे एमबी सिंह। स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे डॉक्टर वीके राज पाल की वार्ता। विषय होगा बच्चों के दिल में छेद की परेशानी। स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:10। एक बार हम आपको फिर बता दें, प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे बच्चों के दिल में छेद की परेशानी विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वी के राजपाल। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास का प्रसारण समय रहेगा कल प्रातः 7:31 पर। सदाबहार फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गीतांजलि में सुबह 8:45 पर। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मंजूषा। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में कल कलाकार होंगी आशा कटारा। 10:00 आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर सरिता में सदाबहार फिल्मी गीतों का। 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार केंद्रित होगा संगीतकार प्रीतम पर। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम केंद्रित होगा अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर। विषय होंगे रंगहीनता एल्बिनिज्म संक्रामक रोग नहीं, इससे पीड़ितों से भेदभाव न करें। कार्यक्रम प्रसारित होगा 11:30 पर। 12:00 कार्यक्रम लोकमंजरी में आपको सुनवाएंगे गोपाल सिंह परमार के गाए कुछ लोकगीत। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में चर्चा होगी बुजुर्गों के प्रति रखें आदर भाव विषय पर। साथ ही आपको सुनवाएंगे वाणी शाह की वार्ता बालिकाओं की सुरक्षा परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे आपकी रसोई दादी का बटुआ और लोकगीत। 1:45 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे वंदना वरुण के गाए गीत और भजन। 2:45 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे जय संतोषी माँ फिल्म की आरती उषा मंगेशकर और साथियों के स्वर में। इस आरती को लिखा था प्रदीप ने, धुन बनाई थी सी अर्जुन ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: इस समय आप

0: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या। अब आइए सुनते हैं संत ज्ञानेश्वर फिल्म का भजन मुकेश की आवाज में। रचनाकार हैं भरत व्यास और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: मुकेश जी को हम लोग मुकेश भैया कहते थे। उनका स्वभाव बहुत ही

अभी आप सुन रहे थे उदय शंकर पाणी की रचना को सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। फिल्म थी चारधाम, संगीत था सुरेंद्र कोहली का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं युग पुरुष फिल्म का भक्ति गीत रविंद्र साठे की आवाज में। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

युग पुरुष फिल्म के इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, जरा अपने बचपन को याद कीजिए आज, क्योंकि स्कूल की घंटी, दोस्तों के साथ खेलना, छुट्टियों की मस्ती और नई नई चीजें सीखने का उत्साह और ढेर सारे सपने हैं हमारे बचपन में। दोस्तों, बचपन का नाम लेते ही मन में कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरती है, लेकिन दुख की बात पता क्या है कि हर बच्चे को बचपन इतना खुशहाल नहीं होता। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखते हैं जो किसी ढाबे पर बर्तन धोते हुए, दुकानों पर सामान उठाते हुए, ईंट भट्टों पर काम करते हुए या घरों में मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम उन्हें देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी हम सोचते हैं कि जिस उम्र में उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में वे काम का बोझ क्यों उठा रहे हैं। और यही गंभीर विषय है बाल श्रम का अभिशाप। चलिए, इस विषय पर बात करने से पहले मुझसे तो मिल लीजिए। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रोशनी शर्मा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा का यूथ स्पेशल कार्यक्रम युववाणी। मैं हाजिर हूं एक बार फिर ऐसे विषयों के साथ जो हम सबकी जिंदगी, समाज और भविष्य से जुड़े हैं। दोस्तों, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस भी है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हर बच्चे का अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे, सुरक्षित वातावरण में बड़ा हो और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पाए। जब किसी बच्चे से उसकी उम्र के अनुसार मिलने वाले शिक्षा, खेल और विकास के अवसर छीन लिए जाते हैं ना, तो उससे मजदूरी या ऐसे काम कराए जाते हैं जो उसके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास

0: को प्रभावित करते हैं, तब वह स्थिति बाल श्रम कहलाती है दोस्तों। और ये केवल कानून या अधिकारों का विषय नहीं है, बल्कि एक बच्चे के पूरे भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। बाल श्रम के दोस्तों कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कठिनाइयाँ, गरीबी, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी और कभी कभी सामाजिक परिस्थितियाँ बच्चों को काम करने के लिए मजबूर कर देती हैं। कई परिवारों को तो ऐसा लगता है कि बच्चों की कमाई से घर का खर्च चलाने में मदद मिलेगी, लेकिन दोस्तों वास्तव में इससे बच्चों का भविष्य ही प्रभावित होता है। कम उम्र में लगातार काम करने से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और कई बार उन्हें ऐसे वातावरण में काम करना पड़ता है जो उनकी सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो पता है क्या है कि जब कोई बच्चा स्कूल से दूर हो जाता है तो उसके लिए आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। क्या लगता है आपको, इसका प्रभाव सिर्फ बच्चों तक रहता है? बिल्कुल नहीं। जब समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा और विकास से वंचित रह जाता है तो उसका असर पूरे देश की प्रगति पर पड़ता है। इसलिए बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की साझा जिम्मेदारी है। हम यानी युवाओं की भूमिका और अधिक है यहाँ पे। हम अपने आसपास जागरूकता फैला सकते हैं, शिक्षा के महत्व को समझा सकते हैं और ये संदेश दे सकते हैं कि हर बच्चे को सीखने, खेलने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। दोस्तों बाल श्रम को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। और इसी बात से जुड़ा है आज का हमारा सवाल। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, तो बताइए भारत में बाल श्रम के निषेध का प्रावधान किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर हम जानेंगे कार्यक्रम के अंतिम चरण में। फिलहाल समय है छोटे से ब्रेक का।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। तो अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे बाल श्रम जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर। उस बातचीत का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी था कि हर बच्चे को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतरीन जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन केवल बचपन ही नहीं, जीवन के हर पड़ाव पर अच्छा स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली हमारे लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम में से कई लोग पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अन्य जिम्मेदारियों के बीच अपने स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दे पाते। अनियमित दिनचर्या, तनाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और गलत खान पान के कारण अनेक जीवन शैली संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने का कला है। तो चलिए जानते हैं इसी विषय पर हमारे साथ और विस्तार में समझाने और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं अनिंद्र सिंह। चलते हैं उनसे योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी रोगों का प्रबंधन के बारे में।
4: मानव सभ्यता ने विज्ञान, तकनीक और सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हमारे पास अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, त्वरित संचार साधन और आरामदायक जीवन के अनगिनत संसाधन हैं। विडंबना ये है कि इन सुविधाओं के साथ साथ अनेक ऐसी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, तनाव, अवसाद, अनिद्रा, थायराइड विकार और कई प्रकार के मानसिक रोग आज करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इन रोगों को सामान्यतः जीवन शैली संबंधित रोग यानी लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। इनका मुख्य कारण कोई संक्रमण नहीं बल्कि हमारी दिनचर्या, खान पान, मानसिक तनाव, शारीरिक निष्क्रियता और प्रकृति से बढ़ती दूरी है। ऐसे समय में योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का संपूर्ण विज्ञान बनकर उभरता है। योग के संबंध में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये किस प्रकार जीवन शैली संबंधी रोगों के प्रबंधन और रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे रोग जो मुख्य रूप से व्यक्ति की दैनिक आदतों, आहार विहार, मानसिक स्थिति

और कार्यशैली के कारण उत्पन्न होते हैं, जीवन शैली संबंधी रोग कहलाते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, तनाव और अवसाद, अनिद्रा, पीठ और गर्दन में दर्द, थायराइड विकार या पाचन संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इन रोगों का बड़ा हिस्सा स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रोका जा सकता है। अब प्रश्न है कि ये जीवन शैली वाले रोग बढ़ कैसे रहे हैं। हम जानते हैं कि आज का जीवन अनेक विरोधाभासों से भरा पड़ा है। सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन शारीरिक गतिविधियां कम हुई हैं। सूचना का प्रवाह तेज हुआ है, लेकिन मानसिक शांति घट गई है। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, वाहन पर निर्भरता, व्यायाम की कमी शरीर की प्राकृतिक कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है और शारीरिक निष्क्रियता बढ़ती है। फास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा चीनी और नमक, वसा का सेवन, ये अनेक रोगों को जन्म देता है। प्रतिस्पर्धा, नौकरी की अनिश्चितता, पारिवारिक दबाव और डिजिटल जीवन ने मानसिक तनाव को बढ़ा दिया है। देर रात तक मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग जैविक घड़ी को प्रभावित करता है और हमारी नींद खराब करता है। तंबाकू, शराब और अन्य प्रकार के नशे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं और इन सभी कारणों के समाधान में योग अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। योग केवल व्यायाम नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है, यानी मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना। उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज प्रायः लोग योग को आसनों तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह संपूर्ण जीवन शैली का विज्ञान है। भारत को कई लोग कभी कभी मधुमेह की राजधानी भी कहते हैं। बदलती जीवन शैली के कारण युवाओं में मधुमेह तेजी से बढ़ भी रहा है। योग मधुमेह के नियंत्रण में सहायक हो सकता है। अग्नाशय की कार्य प्रणाली को बेहतर करता है, तनाव कम करता है जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित होती है, वजन कम करने में मदद करता है, शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है। और इसके लिए जो उपयोगी योगासन हो सकते हैं वो हैं मंडूकासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन, और जो प्राणायाम इसमें उपयोगी हो सकते हैं जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। इनका यदि नियमित अभ्यास किया जाए तो मधुमेह के रोगियों को दवाओं के साथ बेहतर परिणाम मिलते हैं। अक्सर उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। अगर योग किया जाए तो ये तनाव हार्मोन को कम करता है, हृदय की कार्य क्षमता बढ़ाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, धमनियों की लचक बनाए रखता है। जो अभ्यास किए जा सकते हैं वो हैं शवासन, मकरासन, वज्रासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ध्यान। नियमित योग अभ्यास हृदय रोगों की रोकथाम और पुनर्वास दोनों में उपयोगी माना जाता है। आधुनिक युग की एक महामारी है मोटापा, जो तमाम रोगों की जड़ है। ये मधुमेह, हृदय रोग, गठिया, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब का जोखिम बढ़ाता है। अगर योग किया जाए तो कैलोरी बर्न होती है, पाचन बेहतर होता है, हार्मोन संतुलन सुधरता है और भोजन के प्रति सजगता बढ़ती है। वजन नियंत्रण के लिए जो उपयोगी आसन है, सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, नौकासन, उत्कटासन, पवन मुक्तासन, इन सब के करने से शरीर लचीला, ऊर्जावान और संतुलित बनता है। मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय है। आजकल तनाव, चिंता, अवसाद केवल मन को नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। लगातार तनाव से रक्तचाप बढ़ता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, नींद प्रभावित होती है, कार्यक्षमता घटती है। और योग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो मन और शरीर दोनों पर एक साथ काम करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी अभ्यास हैं उनमें ध्यान, भ्रामरी, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, योग निद्रा, ओम जप और इनके नियमित अभ्यास से मन शांत होता है, सकारात्मक और स्थिर भी बनता है। नींद चूंकि शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा है, इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग जब नींद नहीं ले पा रहे हैं और चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति में कमी, थकान, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो योग इसमें शरीर और मस्तिष्क को विश्राम की अवस्था में लेकर जाता है, जहां पर योग निद्रा, शवासन, भ्रामरी, ध्यान के माध्यम से नींद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जाता है। महिलाओं के जीवन में चूंकि हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, योग इन परिवर्तनों को संतुलित करने में सहायता करता है। मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में राहत, PCOS प्रबंधन में सहायता, गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संवर्धन और रजोनिवृत्ति के लक्षणों में कमी करके योग महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर सशक्त बनाता है। आज बच्चे भी मोटापा, तनाव, ऑन स्क्रीन एक्सपोजर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। योग से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति में सुधार होता है, आत्मविश्वास विकसित होता है, अनुशासन की भावना पैदा होती है। और अगर स्कूलों में योग शिक्षा दी जाए तो स्वस्थ पीढ़ी तैयार करने का वो एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। कार्यस्थल पर योग का बड़ा महत्व है।
क्योंकि लंबे समय तक बैठकर काम कर

0: वाले लोगों में अक्सर गर्दन दर्द, कमर दर्द, तनाव और मोटापा जैसी आम समस्याएं देखने को मिलती हैं। कार्यस्थल पर कुछ ही मिनटों का योग आपके पूरे दिन की उत्पादकता को बढ़ा सकता है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, तनाव में कमी आती है, आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, टीम भावना का भी विकास होता है। योग अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरक्षा शक्ति को सुदृढ़ करने में भी योगदान देता है। ये तनाव कम करता है, श्वसन क्षमता बढ़ाता है, शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति बेहतर करता है और समग्र स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। एक समय था जब योग को केवल आध्यात्मिक साधना माना जाता था, लेकिन आज विश्व के प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान योग के लाभों पर अध्ययन कर रहे हैं और तमाम शोध हमें बताते हैं कि नियमित अभ्यास रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक होता है, तनाव हार्मोन को कम करता है, मधुमेह नियंत्रण में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि योग का लाभ तभी मिलता है जब उसे नियमित दिनचर्या का अंग बना लिया जाए। कुछ सरल उपाय हैं। प्रतिदिन 20-30 मिनट योग करके प्रतिदिन 20 से 30 मिनट योग के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। सुबह का समय सर्वोत्तम होता है। योग करने के लिए प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को महत्व दें और योग को प्रतियोगिता न समझें बल्कि साधना समझें, क्योंकि आज मानवता जिस स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है उसका समाधान केवल दवाओं में नहीं बल्कि जीवन शैली में परिवर्तनों में ही निहित है। योग इसी परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है। यह केवल रोगों का उपचार नहीं करता बल्कि रोग उत्पन्न होने की परिस्थितियों को भी कम करता है। शरीर को शक्ति, मन को शांति और जीवन को संतुलन प्रदान करने वाला योग वास्तव में संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। यदि हम नियमित योग, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक सोच को अपनाएं तो जीवन शैली संबंधी अधिकांश रोगों से बचा जा सकता है।
1: दोस्तों, अभी हमने जाना अनिंद्र सिंह से कि किस प्रकार योग एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने में हमारी मदद कर सकता है। वास्तव में दोस्तों, जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तभी वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों को पूरा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन केवल स्वास्थ्य ही विकास का आधार नहीं है। समाज के उन वर्गों तक शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है जो लंबे समय तक विभिन्न कारणों से मुख्य धारा के विकास से दूर रहे हैं। जब समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तभी समावेशी विकास की कल्पना साकार हो पाती है। और इसी सोच के साथ सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। दोस्तों, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल है पीएम अजय योजना। पीएम अजय अर्थात प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का उद्देश्य दोस्तों पता क्या है? अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, ये योजना युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और रोजगार संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। हमें पता है कि आज के समय में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि कौशल भी सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी बन चुका है। ऐसे में इस प्रकार की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही ये योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों में समुदायों तक विकास पहुंचाना सुनिश्चित करना है जहां इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक अवसर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं ना, तब विकास का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। दोस्तों, किसी भी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण से नहीं बल्कि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचने और उसके लाभ उठाने में होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम जागरूक रहें, अपने अधिकारों और अवसरों को समझें तथा दूसरों को भी इनके बारे में जानकारी दें। यही जागरूकता एक सशक्त समाज और आत्मनिर्भर भारत की नींव बन सकती है। चलिए, इस प्रोग्राम में जागरूकता के अलावा आपके मनोरंजन के लिए ये प्यारा सा गीत है।

दोस्तों, संगीत के इस छोटे से विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है युववाणी में। अभी तक हमने स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा की। इन सभी चर्चाओं की एक समान कड़ी है, समय पर सही जानकारी। आज के दौर में जानकारी जितनी तेज और सटीक होगी, निर्णय उतने ही बेहतर होंगे। यही बात मौसम और आपदा प्रबंधन पर भी लागू होती है। बदलते मौसम, अचानक होने वाली भारी वर्षा, तेज आंधी या स्थानीय स्तर पर बनने वाले मौसमीय स्थितियां कई बार लोगों के दैनिक जीवन, खेती, यात्रा और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। ऐसे में मौसम की स्थिति का अधिक सूक्ष्म और वास्तविक समय के करीब आकलन करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में स्काईकास्ट प्रणाली का उल्लेख भी किया जाता है। अगर सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी प्रणाली है जो मौसम संबंधी डेटा, रडार, उपग्रह और अन्य प्रेषणों के आधार पर स्थानीय

स्तर पर मौसम की स्थिति और उसके संभावित अल्पकालिक बदलावों का आकलन करने में मदद करती है। दोस्तों, इसका उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे, केवल ये बताना नहीं है कि मौसम कैसा है, बल्कि ये भी है कि अगले कुछ समय में किसी क्षेत्र में बारिश, बादल, आंधी जैसी स्थितियाँ किस प्रकार विकसित हो सकती हैं। दोस्तों, ऐसी प्रणालियाँ कृषि, शहरी प्रशासन, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, परिवहन सेवाओं और आम नागरिकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। अब उदाहरण के लिए आप समझ ही सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा या तेज तूफान गतिविधि की संभावना हो तो स्थानीय प्रशासन पहले से तैयारी कर सकता है और नागरिक की सावधानी बरत सकता है। दोस्तों, तकनीक तब सबसे अधिक सार्थक बनती है जब वह लोगों की सुरक्षा, तैयारी और दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे। स्काईकास्ट जैसी मौसमी प्रणालियां उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से संगीत विराम का। गीत का आनंद लीजिए, हम थोड़ी देर में फिर लौटेंगे।

दोस्तों, संगीत के इस मधुर विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमने समाज, स्वास्थ्य, विकास और तकनीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इन सभी विषयों में एक साझा उद्देश्य था, देश के प्रत्येक नागरिक तक विकास के अवसर पहुंचाना। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो ये भी जरूरी है कि देश के दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी समान सुविधाएं और अवसर मिले, और इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना और वहां बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना है। लंबे समय तक कई सीमावर्ती गांव भौगोलिक चुनौतियों के कारण विकास की गति से अपेक्षाकृत दूर रहे। ऐसे क्षेत्रों में सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के

माध्यम से इन गांव में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने, स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि इन गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है। दोस्तों, सीमावर्ती गांव केवल देश के भौगोलिक सीमाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे हमारे संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हैं। जब ये गांव विकसित होंगे तो वहां रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर होगा और राष्ट्र की प्रगति भी अधिक सुदृढ़ होगी। दोस्तों, देश का विकास तभी पूर्ण माना जाता है जब विकास की रोशनी अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक पहुंचे, और जब देश का हर नागरिक, हर युवा, हर गांव आगे बढ़ता है, तभी एक सशक्त भारत का निर्माण होता है। क्योंकि आखिरकार ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है। और दोस्तों, अब पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जहां हम जानेंगे आज के कार्यक्रम के सवाल का उत्तर। तो हमने आपसे पूछा था कि भारत में बाल श्रम के निषेध का प्रावधान किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों, इसी बातचीत के साथ आज का युववाणी वॉइस ऑफ यूथ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज की चर्चा ने आपको कुछ नया सीखने, समझने और जानने का अवसर दिया होगा। मैं रोशनी शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

कार्यक्रम ग्रामीण की चौपाल में बैठे और दूर रेडियो पे हमारे प्रोग्राम को सुन रहे सभी भाई बहनों को लोकेंद्र पाठक की राम राम। साथियों, आज चौपाल में बैठकर हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हर गांव, हर गली और हर घर से जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले आज के दिन को याद करना भी आवश्यक है। साथियों, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में पैसों की कमी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम पर भेज दिया जाता है, लेकिन उन बच्चों के माता पिता ये नहीं सोच पाते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये बच्चे जब काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो जब वो बड़े होंगे और अनपढ़ ही रह जाएंगे तब वो कितने पैसे कमा पाएंगे। आज के समय में पढ़े लिखे लोग अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो अनपढ़ रहने पे उनके बच्चों को बड़े होकर कैसा काम मिलेगा, कभी सोचा है? हम कोई भी काम करें, लेकिन साथियों, पढ़ाई लिखाई सबसे पहले होनी चाहिए। मान लिया बड़े होकर आप अपने बच्चों से नौकरी नहीं करवाएंगे, कोई अपना काम करवाएंगे, तो भी तो भैया शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने बच्चों को काम पर नहीं बल्कि स्कूल भेजिए। अच्छा साथियों, एक बात तो है, आजकल लोगों को अपना काम करने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि अपने काम की बात ही अलग होती है। तभी तो तुलसीदास जी ने ये कहा था कि पराधीन सपनेहु सुख नाही। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा सुख हमारी स्वतंत्रता होती है, चाहे बच्चा हो, किसान हो या कोई व्यापारी। जब कोई दूसरों पर निर्भर हो जाता है ना, तो उसके सपनों की उड़ान भी सीमित हो जाती है। इसीलिए अपने पैरों पे खड़े आदमी को अपने जीवन में जितना सुख मिल जाएगा, उतना दूसरों पे निर्भर आदमी को कभी नहीं मिल सकता है। उसका मन हमेशा किसी ना किसी चिंता में लगा ही रहता है। कहीं घूमने जाना हो तो दूसरों की अनुमति, काम करके थक गए हो, आराम करने का मन है तो दूसरों की अनुमति,

यानी वही पराधीन सपनेहु सुख नाही। अर्थात जो व्यक्ति पराधीन है उसे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। भाई दूर की नहीं अपने गांव की ही बात कर लो। यदि किसी किसान के पास बीज खाद या सिंचाई की व्यवस्था ना हो और उसे हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े तो उसे कैसा लगेगा। इसके विपरीत जो किसान अपना काम खुद ही करता है, समय से करता है, उसके पास खेती के जो भी संसाधन है उसको वो सही उपयोग करता है तो उसकी खेती भी अच्छी होती है, वो सुखी रहता है और वो पैसे भी अच्छे कमा लेता है। इसलिए अपने काम यानी अपना खुद का काम यानी रोजगार हमें स्वतंत्र बनाता है। आज गाँव में रहने वाले युवा जो हैं वो अनेकों रोजगार के साधन अपना भी रहे हैं। जैसे कोई आधुनिक खेती अपना रहा है तो कोई डेयरी या पशुपालन के माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। कुछ युवा मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन या मछली पालन जैसे भी काम कर रहे हैं। मित्रों आजकल मंदिरों में शादी ब्याह में फूलों की और फूलों की माला की कितनी डिमांड रहती है ना। इसीलिए आज अनेक युवा फल सब्जी और फूलों की खेती करके पैसा कमा रहे हैं। आजकल गांव में कृषि यंत्र किराए पर देने का बिजनेस भी बहुत तेजी से चल रहा है। इससे अनेक युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। लोग कृषि उपकरण खरीद लेते हैं और जिस किसान को वो उपकरण चाहिए होता है वो वहां पर कुछ पैसे दे के किराए पर ले जाता है। इसी प्रकार हस्तशिल्प माटी कला जैसे अनेकों काम हमें अपना मालिक खुद बनने का अवसर दे रहे हैं और इन सब में सरकार भी हमारी सहायता कर रही है, हमें बहुत ही कम ब्याज पर लोन भी दे रही है। आज बहुत सारी सरकारी योजना में अपना काम शुरू करने पे सब्सिडी भी मिलती है। इसी के साथ सरकार हमें हमारी पसंद का काम का प्रशिक्षण भी देती है। इसलिए आज गांव-गांव में युवा डेयरी बकरी पालन मधुमक्खी पालन मशरूम उत्पादन मछली पालन और कृषि आधारित छोटे उद्योगों को शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है पराधीन सपने हो सुख नाही। साथियों हमें पता है कि इतनी लंबी बात के बाद एक छोटा सा लोकगीत तो बनता है, तो आइए आनंद लेते हैं महावीर सिंह के सुरों में इस लोकगीत का।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मित्रों, लोकगीत से पहले हम पराधीन सपने हूँ सुकना ही यानी स्वरोजगार की बात कर रहे थे। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन भी स्वरोजगार का अच्छा माध्यम है, लेकिन अभी गर्मी विकट पड़ रही है। ऐसे में दुधारू पशुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार हरा चारा, सूखा चारा, दाना और स्वच्छ पानी संतुलित मात्रा में देना चाहिए, तभी वे स्वस्थ रहेंगे और अच्छा दूध उत्पादन करेंगे। आइए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से विस्तार से जानते हैं दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन कैसे होना चाहिए।
3: किसान भाइयों एवं पशुपालक माता बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन की। किसान भाइयों, पशु का स्वास्थ्य और उत्पादन सामान्यतः उसको दिए जाने वाले आहार की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करता है और प्राचीन काल से ही यह कहावत चली आ रही है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए तन और मन, अर्थात हमारे शरीर के वृद्धि व विकास में खान पान का विशेष महत्व है। यही सिद्धांत पशुओं पर भी लागू होता है और दुधारू या पालतू पशु के लिए तो इसका और ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशुओं का जीवन अधिकतर वनस्पतियों पर ही निर्भर होता है और छोटे जुगाली करने वाले पशु भेड़ बकरी, जिसे गरीबों की गाय और चलता फिरता रेफ्रिजरेटर भी कहा गया है, ऐसे पशुओं के आहार में तो वनस्पतियों का और ही अधिक महत्व होता है। इसलिए पालतू पशु को संतुलित आहार देना पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन और दुग्ध

उत्पादन के लिए अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, वर्तमान में तो यह देखा गया है कि पालतू पशुओं के कुल दुग्ध उत्पादन का 60 से 70% खर्चा तो सिर्फ पशु आहार पर ही हो रहा है। यह एक पशुपालकों के सामने बहुत बड़ी समस्या है और भविष्य में इसे कम करना और वैज्ञानिक विधि से पशु पोषण तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, पशु को स्वस्थ रखने और उनसे अधिक दुग्ध उत्पादन लेने के लिए पशु आहार में विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन्स और नमक का उचित अनुपात होना चाहिए। इसी के साथ पशु आहार स्वादिष्ट, सुपाच्य, स्वच्छ, पौष्टिक और सस्ता भी हो और स्थानीय खाद्य पदार्थ खली, चोकर, खनिज लवण का उचित मिश्रण बनाकर तैयार किया जाए। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि अपने घरों पर संतुलित राशन कैसे तैयार करें। यदि आप 100 किलोग्राम संतुलित राशन तैयार करते हैं तो 31 किलोग्राम अन्न, जो गेहूं, मक्का, ज्वार, इसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और 33 किलोग्राम खली, इसमें सरसों की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल, इसमें से जो भी किसान के पास उपलब्ध हो, और इसी के साथ 33 किलोग्राम चोकर व 2 किलोग्राम खनिज पदार्थ और 1 किलोग्राम नमक आदि पदार्थों को अलग अलग पीसकर एक संतुलित मिश्रण तैयार करें। किसान भाइयों, आहार की गणना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना और ही आवश्यक होता है। गाय एवं भैंस को शुष्क पदार्थ प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 400 किलोग्राम वजन की गाय एवं भैंस को रोजाना 10 से 12 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। इस शुष्क पदार्थ को हम चारे और दाने में विभाजित करें तो शुष्क पदार्थ का लगभग 1/3 हिस्सा दाने के रूप में और 2/3 हिस्सा भूसा एवं चारे के रूप में खिलाना चाहिए। किसान भाइयों, पशुओं में आहार की मात्रा उसके दुग्ध उत्पादन क्षमता और प्रजनन की आवश्यकता पर निर्भर करती है। 10 लीटर तक दूध देने वाली गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। किसान भाइयों, इसी प्रकार 10 से 20 लीटर तक दूध देने वाली गाय को प्रति 2.5 किलोग्राम दूध के लिए 1 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 20 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय को प्रति 2 लीटर दूध के लिए 1 किलोग्राम दाना या संतुलित आहार देना उचित होता है। किसान भाइयों, 7 लीटर तक दूध देने वाली भैंस को प्रति 2.5 लीटर दूध देने के लिए 1 किलोग्राम दाना चाहिए होता है और 7 लीटर से अधिक दूध देने वाली भैंस को प्रति 2 किलोग्राम दूध के लिए 1 किलोग्राम दाना की आवश्यकता रहती है। इसी के साथ गाभिन पशु को गर्भावधि के दौरान जीवन निर्वाह के अतिरिक्त 1 से 1.5 किलोग्राम दाना चाहिए होता है। पशुपालक भाइयों, आहार संतुलित हो और एक निश्चित अंतराल पर पशु को खिलाना चाहिए ताकि पाचन संबंधी परेशानियां नहीं हों। एक दिन में 2 बार आहार दें और यह अंतर 8 से 10 घंटे का होना चाहिए। किसान भाइयों, पशु आहार में सूखा हरा चारा तथा दाना तीनों का उचित मिश्रण हो और हरा चारा को काटकर कुट्टी करके ही खिलाना अच्छा रहता है, जिससे आहार की पाचकता बढ़ जाती है और आवश्यक ड्राई मैटर की 2/3 मात्रा को मोटे चारे से तथा 1/3 मात्रा दाने से देनी चाहिए। इसी के साथ 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 25 ग्राम नमक दुधारू पशु को देते रहना चाहिए। चारा खिलाने के लिए नाद पूर्णतः स्वच्छ व साफ हो और आहार में कभी भी कोई अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, इसी के साथ दुधारू पशुओं के लिए पानी का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। पशुओं और जीव जंतुओं के लिए अन्य पोषक तत्वों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पानी होता है। सर्दियों में पानी ठंडा होने की वजह से पशु पानी पीना कम कर देते हैं। ऐसे में पशुपालक को दिन में 3 बार स्वच्छ एवं ताजा
पानी पशु

को पिलाना आवश्यक होता है। पानी शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे शरीर की कोशिकाओं की कठोरता व लचीलापन, और पोषक तत्वों को पचाने में भी मदद करता है। और अधिक दूध देने के लिए पशुओं के लिए तो पानी का और ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। किसान भाइयों, वर्तमान में यह विशेष तौर पर सर्दियों में पशुओं के लिए चारे की बहुत बड़ी समस्या रहती है, इसलिए खरीफ के मौसम में जब हरे

0: सर्दियों में पशुओं के लिए चारे की बहुत बड़ी समस्या रहती है, इसलिए खरीफ के मौसम में जब हरे चारे बाजरा, ज्वार और मक्का की भरमार होती है, उस समय आप हरे चारे से साइलेज तैयार कर सकते हैं और हरे चारे का संरक्षण भी कर सकते हैं, जिसे पशुओं का अचार भी कहा जाता है, और पशु साइलेज को बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं। किसान भाइयों, इस समय पशुपालकों के पास धान का पुआल पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन यह काफी कड़ा, स्वादहीन, अपाच्य और कम प्रोटीन वाला होता है। इसमें ऑक्जेलेट भी अधिक मात्रा में होता है, जो शरीर के कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसान भाइयों, इसलिए पुआल को यूरिया से उपचारित कर लेने से उसकी पौष्टिकता बढ़ती है, वह नरम, स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर बन जाता है और ऑक्जेलेट की मात्रा भी कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं पुआल को यूरिया से उपचारित करने की विधि। 1 क्विंटल पुआल को 6 इंच परत के रूप में जमीन पर फैला दें। 4 किलो यूरिया का 50 लीटर पानी में घोल तैयार करके चलनी की मदद से पुआल के ऊपर छिड़काव करें। उसके बाद फिर 1 क्विंटल पुआल को पहले से बिछे पुआल पर डालें और पुनः उसी मात्रा में घोल तैयार करके उसके ऊपर डालें। इस तरह एक बार में 5 से 10 क्विंटल तक पुआल उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद पुआल के ढेर को पॉलीथिन की शीट से अच्छी तरह ढक दें, जिससे अंदर की गैस बाहर न निकले। इस प्रक्रिया को करने के 20 दिन बाद यह पशुओं को खिलाने के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, उपचारित पुआल को जानवर बड़े ही चाव से खाते हैं और पशु इसे आसानी से पचा भी लेते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह अजोला का भी पशु आहार में और ही अधिक महत्व है। दुधारू पशुओं को 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला खिलाने से 15 से 20% तक दूध की बढ़ोतरी हो जाती है। अजोला एक जलीय फर्न है, जो वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौष्टिक आहार प्रोटीन बनाने में सहायक है। अजोला में प्रोटीन के अलावा आवश्यक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ जैसे विटामिन, बीटा कैरोटीन, उपयोगी एमिनो अम्ल एवं खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसान भाइयों, 3 महीने में एक बार, वर्ष में 4 बार पालतू पशुओं का क्रमहरण अवश्य कराते रहें, क्योंकि यदि पशु के पेट में कीड़े हैं तो जो आप पशु को आहार दे रहे हैं उसका 25 से 30% तक वेस्ट जा रहा है, या कीड़े चट कर रहे हैं, जिसका दुग्ध उत्पादन पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, और समय से पशु हीट में नहीं आ रहे हैं, और इसी के साथ बांझपन की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि पशुओं के विकास एवं उनसे अधिकतम दुग्ध उत्पादन लेने के लिए उनके स्वच्छ एवं आरामदेह आवास का प्रबंधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रेडियो आगरा और संपर्क करें कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज बिचपुरी आगरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मित्रों, अभी आप सुन रहे थे दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन से जुड़ी एक वार्ता, जिसमें वार्ताकार थे धर्मेंद्र सिंह। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए अब बात कर लेते हैं खेती में नई किस्म की। आगरा और आसपास के क्षेत्रों में किसान थाई अमरूद की खेती पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इस किस्म के अमरूद बड़े होते हैं, उनका उत्पादन भी अच्छा होता है और बाजार में अच्छी मांग भी होती है। मित्रों, ये अमरूद लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, इसलिए इसे दूर के बाजारों तक भी भेजा जा सकता है।

अमरूद एक लाभकारी खेती है, आप भी जरूर आजमाएं। आइए इसी के साथ जान लेते हैं आगरा और आसपास के क्षेत्रों के मौसम का हाल। विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में अनेक स्थानों पर बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी संभावित है। आइए इसी के साथ जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, जिसमें सब्जियों के भाव में टमाटर 600 से लेकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 600 से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन का भाव है 4500 से लेकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल और आलू का भाव 500 से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल गुणवत्ता के आधार पे। तो मित्रों, हमारी चौपाल की बातें तो चलती रहेंगी, इसलिए आइए अब सुरों की चौपाल सजाते हैं। सुनिए सावित्री दीक्षित के मधुर आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रोताओं को कल्पना सरकार का नमस्कार। और श्रमिक भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? गर्मी उमस देखिए कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में जब धूप तेज होती है, काम करने का दिल ही नहीं करता है। हालांकि कल बारिश हुई आगरा में अच्छी खासी, लेकिन धूप निकल गई, धूप निकली तो गर्मी हुई। तो गर्मी होती है ना साथियों, कहीं जाने का दिल नहीं करता। इंतज़ार करते हैं भाई शाम हो तब जाके बाहर जाएं, कुछ काम करें। लेकिन हमारे श्रमिक भाई के बारे में सोचिए, आजकल तो निर्माण कार्य काफ़ी चल रहा है, घर बन रहे हैं, कहीं कुछ काम चल ही रहा है। सोचिए कैसे काम करते होंगे इस गर्मी में। ऊपर से हमारी बहनें, श्रमिक बहनें जो होती हैं, बच्चों को भी काम पर ले जाती है मजबूरी। साथियों, कौन देखभाल करेगा बच्चों की? घर पर कोई है ही नहीं। काम करना भी ज़रूरी है, और आजकल के समय में पति पत्नी दोनों का काम करना ज़रूरी हो जाता है, तब जाकर कुछ कर पाते हैं ना, गृहस्थी चला पाते हैं। और यहाँ तक कि साथियों, बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं, सब नहीं लेकिन बाल श्रम की समस्या तो हमारे देश में बहुत है। आपने भी देखे होंगे बच्चों को मजदूरी करते हुए, ढाबों में प्लेट साफ करते हुए, खाना परोसते हुए, चाय स्टॉल में चाय देते, कप प्लेट साफ करते हुए, दुकानों में सामान देते हुए, कूड़ा बीनते हुए, चौराहा पर गाड़ी साफ करते हुए, खिलौने बेचते हुए, कहाँ नहीं देखे जाते बाल श्रमिक। बोलिए, बच्चों के से काम तो करवाते ही हैं, ऊपर से उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, ये भी देखा गया है। साथियों देखिए, माता पिता ना अपनी जान से प्यारे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहते, लेकिन मजबूरी, गरीबी, आर्थिक रूप से संपन्न ना होने के कारण उन्हें बाल श्रम की भट्टी में झोंक देते हैं। फिर शिक्षा की कमी, पढ़े लिखे तो होते नहीं है बहुत सारे श्रमिक भाई, तो शिक्षा के महत्व को नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं भाई जितने हाथ उतनी कमाई, ये विचारधारा होती है उनकी। जागरूकता की कमी आप कह सकते हैं। फिर ये भी देखा जाता है, जब घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, हो सकता है कि उस बच्चे का पिता ना हो, घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, या फिर है तो बिस्तर में पड़े हुए हैं, तब मजबूरन परिवार के पालन पोषण के लिए उन्हें बाल श्रमिक बनना पड़ता है। और देखा ये भी जाता है, कुछ बच्चे अनाथ भी होते हैं, बेघर बच्चे जो होते हैं, तो उन पर कोई उत्पीड़न करता है तो घर से भाग जाते हैं, तब पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है उन्हें। फिर एक वजह साथियों ये भी है, बाल श्रम सस्ता भी होता है। जी हाँ, देखिए होटलों, दुकानों, उद्योग कारखानों के जो मालिक होते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम लाभ कैसे कमाएं, अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, तो सोचते हैं भाई कम उम्र के बच्चे को काम कर उनसे काम लेते हैं और उससे पैसा बच जाएगा। बेचारे बच्चे घर चलाने के लिए मजबूरन काम करना भी उन्हें पड़ता है। साथियों, जिस उम्र में बच्चे खेलना चाहिए, उन्हें कूदना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, स्कूल जाने की उम्र होती

ये शरारत करने की उम्र होती है, उस उम्र में जब ये बच्चे काम करते हैं तो शारीरिक रूप से भी उन्हें अनेक परेशानियां होती है। अब देखिए, काम करेंगे तो छोटे छोटे कंधों पर बोझ उठाएंगे तो उनकी मांसपेशियों में असर तो पड़ेगा ना, फिर पोषक तत्वों की कमी होती है, हड्डियों का विकास रुक जाता है, कुपोषण जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उनके व्यक्तित्व विकास पर भी साथियों नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके मन मस्तिष्क पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बोलिए, बालक जो है उनका मन कितना मासूम होता है, और जब वो काम करते हैं बहुत सारे लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो बुरी तस्वीर उनके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, तो व्यक्तित्व पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फिर शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं क्योंकि उस उम्र में वो काम करते हैं तो पढ़ाई तो कर नहीं पाते हैं, तो जो शिक्षा से वो उनका उज्जवल भविष्य बन सकता है उससे वो दूर हो जाते हैं। और हाँ, कभी कभी तो दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं बाल श्रमिक जो होते हैं, क्योंकि देखिए, पटाखे के कारखाने की बात हो, खदानों में काम करने की बात हो, वहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो बच्चे सफर करते हैं, परेशान होते हैं। साथियों, ये तो हम जानते हैं है ना कि बच्चे से हम बाल श्रम करा रहे हैं जो कि नुकसानदायक है, माता पिता के लिए भी, बच्चे के लिए भी, देश के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे माता पिता के आंखों के तारे ही नहीं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य भी होते हैं, वो कर्णधार हैं। यदि उनका बचपन सुरक्षित खुशहाल होगा तो उनका भविष्य मजबूत सुनहरा होगा। हाँ, लग रहा है कि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, गरीब हैं, तो देखिए साथियों, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती है, छात्रवृत्ति भी दी जाती है, फिर दिन के वक्त भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, मिड डे मील योजना। तो क्यों इन बच्चों को बाल श्रम की भट्टी में झोंके, बोलिए, उनके बचपन को क्यों तबाह करें, उनके मासूम आंखों में पलते मासूम सपनों से उन्हें क्यों वंचित रखें, उनको उनका मूल अधिकार क्यों ना दें। हमें देना होगा साथियों, यदि आप अपना देश का भला चाहते हैं तो खोल देना उनके लिए दरवाजे खिड़कियां, उन्हें उड़ान भरने दीजिए, ठीक है। कितनी सारी बातें हो जाती हैं आपसे बातों बातों में। देखिए श्रोताओं, आज का प्रश्न भी हम आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तो आपका ज्ञान में इजाफा होगा। तो प्रश्न ये है आज का कि सिखों के छठवें गुरु कौन थे, उसका उत्तर इसी कार्यक्रम में ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको हमको सुनते रहना होगा, है ना। तो बच्चों की बात कर रहे थे, भाई फिर से बच्चों की बात पे ही आएंगे कि हम तो यही कहेंगे, देखिए बच्चों को जी भर प्यार करते रहिए, उनको इस तरह से पालिए कि गम की छांव भी उनके ऊपर ना आए, बस सुख प्यार ही उनकी किस्मत में आए।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: श्रुतो, इस अंतराल से पहले जो गीत हमने सुना दिल को छू गया ना। ऐसे जहां पर ले जाने की बात कर रहे हैं बच्चों की, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, हो तो बस प्यार ही प्यार हो, ऐसे गगन के तले। सच में साथियों, यदि हम ऐसे गगन के तले ले जाएंगे तो बाल श्रम तो रहेगा ही ना, नहीं रहेगा ना। पता है साथियों, बाल श्रम जो होता है ना, समाज के लिए, देश के लिए कलंक है। इसलिए आइए मिलकर लोगों को जागरूक करें, बाल श्रम के विरुद्ध आवाज उठाएं, बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस को सार्थक बनाएं, उनका बचपन सुरक्षित करें, सामाजिक सुरक्षा देकर, सम्मान देकर, प्यार देकर, स्कूल भेजकर, शिक्षित करकर, उनको उनका अधिकार देकर। हालांकि भारत में बाल श्रम के खिलाफ कानून भी है, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार की मजदूरी कोई करवाता है तो पूरी तरह से गैर कानूनी है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून साथियों क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हमें संरक्षण मिले, अधिकार मिले, है ना। तो जागरूक तो होना होगा, लेकिन कभी कभी ना साथियों, हम स्वयं को भी ठगा हुआ महसूस करते हैं जब दुकान में जाते हैं और दुकानदार से सामान लिया और बेकार सामान लेकर चले आए, कभी कभी एक्सपायरी डेट भी नहीं दिखा, जागरूक नहीं रहे। तो ऐसे में साथियों, हमें कोई ठग लेता है एक उपभोक्ता के रूप में, तो हम कहाँ जाएं? भाई, उपभोक्ता के लिए भी कानून बनाया गया है, उनको भी अधिकार है कि वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। वैसे हमारे आज के जो वार्ताकार हैं किशन सिंह परमार, वो हमें आपको उपभोक्ता अधिकार और जागरूकता के विषय पर ही जानकारी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं।
5: भारतवर्ष की 85% आबादी मजदूरों और किसानों की है, जो प्रतिदिन उपभोक्ता समस्याओं का सामना करती है। औसतन भारतीय मजदूर और उपभोक्ता गरीब, अशिक्षित, अनजान होता है। मजदूर और किसानों के लिए उपभोक्ता संरक्षण एक शिक्षा ही नहीं, वरन संगठित आंदोलन भी है, तथा विकासशील भारत

शोषण मुक्त समाज के निर्माण का तरीका है, जिससे परिपक्व उपभोक्ता आंदोलन का सूत्रपात होता है। उपभोक्ता शिक्षा नागरिकों में ज्ञान व जानकारी देने का महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो उपभोक्ताओं में वस्तुओं और सेवाओं के प्रति जानकारी व कुशलता पूर्वक समस्या का समाधान करना सिखाता है। शिक्षा जानकारी देती है और जानकारी शक्ति होती है। इस प्रकार ज्ञानवान उपभोक्ता ही शक्तिशाली नागरिक होता है। उपभोक्ता के निम्न अधिकार हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार है, चयन करने का अधिकार है, सुनवाई होने का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, और उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार है, और साथ में न्याय पाने का भी अधिकार है। इसके साथ में मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि होने का भी अधिकार है, और सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। उपरोक्त अधिकारों की प्राप्ति के लिए जिला, प्रदेश और केंद्रीय स्तर पर 3 स्तरीय समस्या निवारण तंत्र का स्थापना किया गया है, जैसे जिला फोरम, राज्य आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता आयोग, इनकी स्थापना की गई है। क्योंकि जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम, जहां 20 लाख रुपए तक के मामले निस्तारित किए जाते हैं, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, जहां 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ तक के मामले निर्णय किए जाते हैं, और 1 करोड़ से अधिक के मामले इससे अधिक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का क्षेत्राधिकार होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जिला फोरम की अपील राज्य आयोग में, और राज्य आयोग की अपील राष्ट्रीय आयोग में की जाती है। जिला फोरम में उपभोक्ता खुद या स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन या समान मामला होने पर कई मामलों के कोई एक पीड़ित उपभोक्ता पैरोकारी कर सकते हैं। यहाँ उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाया जाना मुख्य उद्देश्य। उपभोक्ता के लिए 90 दिन और 150 दिनों में उपभोक्ता समस्या शिकायत का निवारण की व्यवस्था की गई है, और नाम मात्र की कोर्ट फीस से शिकायत दायर हो जाती है। जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है। और आमतौर पर उपभोक्ता विवाद कैसे होते हैं, जैसे घट तौलिए, कम तोलना है, गलत नाप करना है, या सब स्टैंडर्ड है, गुणवत्ता कम होना, त्रुटिपूर्ण घरेलू उपकरण जैसे खराब टीवी, खराब फ्रिज, खराब वॉशिंग मशीन, या एक्सपायरी तिथि के बाद की कोई दवाओं की बिक्री हो, या खुदरा मूल्य से ज़्यादा समय लिया जाना या फिर मिलावट किया जाना, अशुद्धता जो अधिक फायदे के लिए जानबूझकर की जाती है, उपकरणों आदि में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना, और सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग, बाजार में बनावटी सामान लाना, बनावटी कमी दिखा देना, माल का अवैध भंडारण कर लेना ताकि माल महंगे दामों पर बेचा जा सके, जैसा कि आजकल भी हो रहा है। जैसे कि दालों की स्थिति है, बहुत भंडारण हो रहा है लेकिन उसके बावजूद कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके साथ सुरक्षा, दीर्घजीवता, गुणवत्ता के प्रति भ्रम पैदा करने वाले विज्ञापन दिए जा रहे हैं, जैसे बाल उगाने वाले विज्ञापन, और उसमें बाल नहीं उगते तो उपभोक्ता को वहाँ ठगा जाता है। इसी प्रकार से तमाम जादुई दवाएं बेचने का तरीका, ये सब चीज़ें ऐसे आइटम हैं जिसमें कंज्यूमर का काफ़ी नुकसान होता है और कीमती सेवाओं से वंचित भी रहता है। तो सेवा प्राप्ति के बाद व्यवहार और गुणवत्ता खराब हो जाना, तो ये सब चीज़ें उपभोक्ता के लिए बड़ी नुकसानदेह सिद्ध होती हैं, और इसका परिणाम होता है उनका शोषण। ये सभी समस्याएं वस्तुओं, पदार्थों और सेवाओं में अक्सर पाई जाती हैं। इसके लिए मजदूर उपभोक्ता भाइयों को चाहिए कि कुछ आवश्यक कदम उठाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और कमाए हुए धन और समय की सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे विशेष जागरूकता कार्य व्यवहार, सेमिनार अटेंड करना, सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखना, और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति समर्पण रखना। इसके साथ में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण में है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पात्र जो हैं उनमें अधिवक्तागण हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, मजदूर नेता और यूनियन हैं, महिलाएं हैं, और सबसे अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनके पास समय होता है, वो समाज के हित में इन सब चीज़ों का संचालन कर सकते हैं। अभी भारत सरकार ने उपभोक्ता क्लबों की स्थापना सरकारी स्तर पर विद्यालयों में की है, जिससे विद्यार्थियों को उन्हीं के स्तर पर एक उपभोक्ता शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बताया जाता है, और इन विद्यार्थियों से जो सीधा संदेश है वो परिवारों को जाता है ताकि परिवारों तक बात पहुंचे। और मजदूर भाइयों से जब वार्ता होती है तो उनके लंच टाइम में या काम जब समापन होता है उस समय इस उपभोक्ता शिक्षा को दिया जाना समाज के हित में होता है।

0: क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन तो मजदूर भाइयों के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए मजदूर भाइयों के लिए ये उपभोक्ता शिक्षा बहुत ही लाभकारी होती है। इसके साथ ही उपभोक्ता संरक्षण में सभी सेवाएं आती हैं, जैसे मेडिकल, हाउसिंग है, टेलीफोन है, बिजली, बैंकिंग, कोरियर, पानी, बीमा, शिक्षा, मनोरंजन, क्लिनिकल लैब, गैस कंपनियां, डॉक्टर, विश्वविद्यालय, एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट हॉस्पिटल, बिल्डर्स, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, इन सभी की जो सेवाएं हैं ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कवर होती हैं।
1: उपभोक्ता अधिकार और जागरूकता, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे किशन सिंह परमार। साथ ही ये तो तय है, जब हम जागरूक रहेंगे तब हमारा कोई शोषण कर ही नहीं सकता, फिर कानून भी हमारी मदद करता है। यदि हम कोई हमारी शोषण करता भी है तो कानून हमारी मदद करता है। मदद साथियों, एक एहसास है साथियों, जब हम किसी की मदद करते हैं ना, मन को सुकून मिलता है, खुशी की अनुभूति होती है। निस्वार्थ सेवा एक आत्मिक शांति भी तो देता है। और हमारा जो देश है, इस देश का हर धर्म यही सिखाता है, मदद करो, निस्वार्थ भाव से मदद करो। अब सिख समुदाय की बात करें तो देखिए, आपने देखे भी होंगे संपन्न परिवार के लोग भी सेवा देते हैं गुरुद्वारा में, लोगों की मदद करते हैं। पर आप यकीन नहीं मानेंगे साथियों, पंजाब के एक गांव के पास से ट्रेन गुजरती है, लंबी दूरी की ट्रेन है, कोई स्टेशन नहीं है, लेकिन ड्राइवर वहाँ रुकता है क्योंकि गाँव के लोग निस्वार्थ भाव से जो ट्रेन में यात्री होते हैं ना, उनके लिए चाय, पानी, कॉफ़ी, पराठा, जूस उन्हें पिलाते हैं, उन्हें देते हैं ताकि उनकी थकान मिट सके, वो भूखे ना रह सके। साथियों, सिख धर्म हर धर्म की तरह नेकी के पथ पर चलने को कहता है, समानता की बात करता है, नाप जपने की बात करता है। सच में साथियों, जब वाहिगुरु वाहिगुरु का मुख पर नाम होता है ना, तो हम गलत आचरण कर ही नहीं सकते क्योंकि ईश्वर का हम नाम जप रहे होते हैं। साथियों, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव सिंह ने की थी, फिर अन्य गुरुओं ने इस धर्म को आगे बढ़ाया, लोगों को शिक्षित किया, मानवता की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति तक दी है। और आज साथियों बात करेंगे छठवें गुरु की। यही तो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सिखों के छठवें गुरु कौन थे, और कोई नहीं, श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी थे, जो गुरु अर्जुन देव के इकलौते संतान थे। मात्र 11 साल की उम्र में ही गुरु हरगोविंद साहिब ने अपने पिता से गुरु की उपाधि पा ली थी। गुरु अर्जुन साहिब की शहादत के बाद साथियों सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण पल था, जब सिखों ने मुगल साम्राज्य की मनमानी को रोकने के लिए पहली बार गंभीरता से विचार किया। गुरु हरगोविंद सिंह ने कहा कि हमें एक सेना के रूप में संगठित होना होगा। उन्होंने एक सेना के रूप में संगठित किया सिख समुदाय को। जी हाँ साथियों, हरगोविंद सिंह साहिब ने शांति ध्यान में लीन रहने वाले सिख कौम को राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से चलाने का फैसला किया। गुरु हरगोविंद सिंह ने दो तलवार पहनी, एक आध्यात्मिक शक्ति के लिए पहनी और दूसरी सैन्य शक्ति के लिए। अब सिखों की भूमिका पढ़कर संत सैनिकों की बन चुकी थी, वो स्वयं को एक शक्तिशाली तो योद्धा थे ही, वो अन्य सिखों को भी लड़ने की उन्होंने प्रशिक्षण दिया था, यानी गुरु हरगोविंद सिंह ने, और इस बात को अपना मूल सिद्धांत बनाया कि एक सिख योद्धा केवल बचाव के लिए तलवार उठाएगा, ना कि हमले के लिए। साथियों, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में बुनियादी मानव अधिकारों के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। ऐसे महान संत, ऐसे महान गुरु को हमारा बारंबार प्रणाम, शत शत नमन। साथियों, जब मन में शांति होती है ना, जो भी हम काम करते हैं बहुत खुश होकर करते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं वो तन को लग जाता है, फिर तन यदि

स्वस्थ रहता है तो हम हर काम को दिल से भी कर पाते हैं ना। और आज सेहत टिप्स में बात करेंगे खरबूजे के फायदे की। बताइए किसको किसको पसंद है ये खरबूजा? भाई हमें तो बहुत पसंद है, क्योंकि देखिए जब हम इसे खाते हैं ना तो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, क्योंकि 90% तक इसमें पानी पाया जाता है। फिर फाइबर भी बहुत होता है तो पाचन को दुरुस्त रखता है। फिर विटामिन ए और सी भी होता है तो आपकी जो त्वचा है ना उसमें निखार आ जाएगा, झुर्रियाँ कम होगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पोटेशियम होने से ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करता है। फिर कैलोरी भी कम होती है तो वजन घटाने में भी मदद करता है। बीटा कैरोटीन होने से आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, देखिए खरबूजे खाने के बाद यदि आप खरबूजा खाते हैं तो पानी तुरंत ना पिए। पता है साथियों, खरबूजा ही खरीद रहे थे, एक बच्चा वहीं था, मम्मी से जिद कर रहा था आम ले लो आम ले लो आम ले लो। मम्मी ने आम भी लिया, खरबूजा लीची भी लिया और बच्चे ने हाथ में बस आम को ही पकड़ा और गाने लगा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। हमने पूछा भाई ये गाना तुम्हें पसंद है? वो शर्मा के पीछे होगा, लेकिन उसकी मम्मी बोली दिन भर यही गाता है, उसको ये गाना भी पसंद है, मम्मी मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से प्यार है। तो हमने कहा ठीक है इसकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन एक गीत की हमने उनके फ़ोन पर न्यूज़ ऑन ईयर डाउनलोड कराया तो उस मासूम बच्चे के लिए, उस सूर्य बच्चे, उसका नाम सूर्य था, उसके लिए एक गीत प्रस्तुत है।

है ना, बोलो बोलो, हमें भी आपसे प्यार है। साथियों, आपको कितना स्नेह है हमसे ये हमें ज़रूर बताइएगा पत्र लिखकर, लेकिन अभी तो अनुमति देनी होगी, लेकिन आप इस गीत का आनंद लीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, शाम के 7 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित

0: a distilled video model built to make frontier video AI affordable, accessible and relevant. Addressing the launch event in New Delhi, Secretary in the Ministry of Electronics and Information Technology, S. Krishnan said the launch of one of the foundational models supported under the India AI mission marks a significant milestone in India's AI journey. He said that VARA represents the kind of research-led capability building that reflects the government's commitment to developing indigenous AI capabilities and fostering a vibrant deep tech ecosystem. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarter-final clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup 2026, co-host Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर केंद्रित वार्ता। बच्चों से बचपन मत छीनिए विषय पर वार्ताकार हैं डॉक्टर शुभा सिंह।
2: कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बचपन से सुखद और खूबसूरत और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन ही वह समय होता है जब आंखों में सब कुछ देख लेने की उत्सुकता होती है, बाहों में आसमान समेट लेने की चाहत होती है और जमीन को नाप लेने की ललक होती है। ऊंचाइयों से डर नहीं लगता, गहराइयों का खौफ नहीं आता और बार बार गिर के भी उठ संभलने का हौसला कम नहीं होता। पर जिम्मेदारियों के बोझ से परे क्या हर बच्चा एक सुखद और उच्च जीवन व्यतीत करने का ख्वाब बुन पाता है? अपने शारीरिक, मानसिक एवं संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त कर पाता है? क्या हर बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसे स्वप्न देखने की आज़ादी देती है? इन सवालों के जवाब अत्यंत व्यथित कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जैसे असंख्य बच्चे नर्म बिस्तर और माँ की गोद के बजाय सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करने को विवश हैं, खेलने की उम्र में आजीविका उपार्जित करने को वयस्कों के बीच संघर्षरत हैं और पढ़ने की उम्र में किसी न किसी शोषण का शिकार बन रहे हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के सर पर यदि छत ना हो, उन्हें संतुलित आहार न मिले और अल्प आयु से ही मजदूरी जैसे कार्यों में संलग्न होना पड़े, तो उनका भविष्य शायद ही किसी देश का उज्जवल भविष्य हो सकता है। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर मैं विशेष रूप से बाल श्रमिक की श्रेणी में आने वाले बच्चों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रयास करूंगी। सामान्यतः कानून और प्रशासन के दृष्टिकोण से बाल श्रम एक अपराध है, वहीं नशे के आदि पिता के लिए यह सुविधा है, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के लिए एक वरदान है और अनाथ तथा बेघर बच्चों के लिए एक अभिशाप है। परंतु वास्तविकता यह है कि ये एक परिणाम है हमारे समाज के गैर जिम्मेदार नज़रिए का। जिस तरह बहुत खराब मौसम बसंत के बीजों को नष्ट कर देता है, उसी तरह अल्प आयु में जीवन के कड़े संघर्ष और मेहनत का बहुत जल्दी सामना करने से एक बच्चे के भविष्य के युवा स्वप्न धूमिल हो जाते हैं और उनकी शिक्षा की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। दुनिया भर के सभी राष्ट्र बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि बच्चे सभी राष्ट्रीय मुद्दों में सबसे ऊपर हैं। उनके अभाव में हम एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स तथा 173 अन्य राष्ट्रों ने बाल अपराध संबंधी बैठक में एक कानून पारित किया, जिसका लक्ष्य था कि सभी बच्चों के लिए संतुलित आहार और न्यूनतम शिक्षा सुनिश्चित की जाए, साथ ही उन्हें आर्थिक एवं शारीरिक यातनाओं से भी दूर रखा जाए। पर ILO के द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल श्रम से संबंधित

0: रिपोर्ट चौंकाने वाले और चिंताजनक तथ्य उजागर करती है। बाल श्रम हर उम्र में लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज्यादा प्रचलित है। दुनिया भर के बाल श्रम का सबसे बड़ा 70% हिस्सा कृषि क्षेत्र में संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। दुनिया भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है। पिछले 4 वर्षों में 8.4 मिलियन बच्चों की वृद्धि हुई है। इसका आशय है कि बाल श्रम आज भी एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। वैश्विक स्तर पर बाल श्रम का प्रतिशत वर्ष 2016 से लगभग स्थिर रहा है, परंतु बाल श्रमिकों की कुल संख्या में लगभग 8 मिलियन की वृद्धि हुई है। वैश्विक परिदृश्य इस बात का परिचायक है कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में गत 4 वर्षों में बाल श्रमिकों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि बाल श्रमिकों का प्रतिशत गिरा है। वहीं उप सहारा अफ्रीका के क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या एवं प्रतिशत दोनों में ही वृद्धि हुई है। संपूर्ण विश्व की तुलना में सर्वाधिक बच्चे इसी क्षेत्र में श्रम कार्यों में संलग्न है। अनिवार्य शिक्षा की बाध्यता के बावजूद अधिकांश बच्चे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के बोझ के कारण आजीविका और शिक्षा के बीच संतुलन नहीं बना पाते और अंततः वह अपनी शिक्षा और भविष्य के ऊपर अपनी आर्थिक क्रियाओं को वरीयता देने को विवश हैं। वहीं अगर भारत में बाल श्रम की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 10.1 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं, जिनमें से 8.1 मिलियन बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक और खेतिहर मजदूरों के रूप में कार्यरत हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह शोषणकारी प्रथा भारत सहित पूरे विश्व में कड़े नियमों और कानूनों जो बाल श्रम को निषेध करते हैं के बावजूद आज भी जारी है। यह सामाजिक मुद्दा समाज में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसने विकास को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है, परंतु इसे हल कर पाने में कहीं न कहीं राष्ट्र और समाज दोनों यही प्रयासों में कुछ कमी रह गई है। किसी भी देश के लिए इस प्रकार से अमूल्य मानव संसाधन की चिंतनीय क्षति शर्मनाक कही जा सकती है। कड़वा है पर सच है कि बाल श्रम किसी भी समाज का बदनुमा दाग है, उसे पूरी तरह मिटाया ही जाना चाहिए। बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए सरकारी संगठनों के साथ साथ स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें सरकारी समर्थन एवं अनुदान देकर और प्रभावी बनाया जा सकता है। बाल श्रम कई कारकों का परिणाम है, जिसमें गरीबी, अच्छे काम के अवसरों की कमी, प्रवास और आपात स्थिति भी सम्मिलित है। ये कारक सामाजिक असमानताओं के न केवल कारण हैं, बल्कि भेदभाव प्रेरित करने के परिणाम भी हैं। लंबे समय तक शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूल तक पहुंच न होने से उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, जो कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। गौरतलब है कि बाल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या अनौपचारिक उद्योगों में संलग्न है। हो सकता है कि बाल श्रम के तत्कालिक परिणाम खतरनाक न प्रतीत होते हों, पर उनकी शिक्षा, उनके कौशल, उनकी दक्षता एवं उनकी योग्यता को दरकिनार करके दीर्घकालिक और विनाशकारी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे उनके सुनहरे भविष्य की संभावनाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाती हैं। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर इस बात का आभास होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की सबसे अमूल्य निधि वहां के बच्चे हैं और उन्हीं के विकास की दिशा से राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। उनका सशक्तिकरण हो, उनकी स्वाभाविकता बनी रहे, उनके मौलिक गुण परिष्कृत हों, वे समृद्ध हों, तभी समाज की मुख्यधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए वंचित बच्चों को उनका बचपन लौटाने के लिए हम सभी को इस महान कार्य को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के साथ, गैर सरकारी संगठनों के साथ, कानून के साथ और सबसे बढ़कर मानवीय संवेदनाओं को जागृत रखते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाना होगा। तो आइए हम सब बढ़ाते हैं और बच्चों को उनका बचपन लौटाते हैं।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर केंद्रित वार्ता।

बच्चों से बचपन मत छीनिए। वार्ताकार थी डॉक्टर शुभा सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
6: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं।
4: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी

0: समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
3: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन जेई एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान

0: जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी सुधी श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का जज्बा अदम्य साहस, देशभक्ति और अद्वितीय बलिदान का प्रतीक था। उन्होंने स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना और मातृभूमि की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इतना ही नहीं, क्रांतिकारियों के संघर्ष ने देश के जनमानस में आजादी की अलख जगाई। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल अहिंसक आंदोलनों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उग्र और सशस्त्र क्रांति का एक स्वर्णिम अध्याय भी जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार और फूट डालो और राज करो की नीति से परेशान होकर, त्रस्त होकर हमारे देश के युवाओं ने क्रांति का मार्ग चुना। इन क्रांतिकारियों का जज्बा इतना प्रबल था कि वे मौत को भी अपनी प्रेयसी मानते थे और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते थे।

क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेजों को केवल प्रार्थना पत्रों या अहिंसक विरोध से नहीं बल्कि सशक्त और सशस्त्र संघर्ष से ही देश से बाहर निकाला जा सकता है। चाहे मंगल पांडे का 1857 का विद्रोह हो या भगत सिंह का असेंबली में बम धमाका, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। वे पुलिस की गोलियों और जेल की यातनाओं से कभी नहीं डरे। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और खुदी राम बोस जैसे वीरों ने देश की आजादी के लिए बहुत कम उम्र में सर्वोच्च बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसे नारों ने उनके इसी जोश को दर्शाया।

क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठन बनाए। विदेशों में भी लाला हरदयाल जैसे नेताओं ने गदर पार्टी की स्थापना करके अंग्रेजों के खिलाफ जज्बे को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। क्रांतिकारियों का जज्बा केवल हिंसक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य आम जनता के दिलों से अंग्रेजों का डर निकालना था और उन्हें राष्ट्र के लिए मरने मिटने को तैयार करना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम इसलिए फेंका ताकि वे बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुना सकें। उनके साहसिक कारनामों ने देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया और वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े।

उदार राष्ट्रवादियों ने भूमिगत रूप से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने विचारों का प्रसार करने और क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए गुप्त संगठन बनाए। इतना ही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान अतुलनीय और अत्यंत प्रेरणादायक था। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष और अपने सर्वोच्च बलिदान के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और संपूर्ण भारत के जनमानस में राष्ट्रवाद, साहस और स्वतंत्रता की अटूट भावना का संचार किया।

अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का जज्बा इतिहास की वो अमूल्य धरोहर है जो हमें राष्ट्रप्रेम और संघर्ष का पाठ पढ़ाती है। उनकी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं गई। उनके इसी जोश ने अंततः हमारे देश को स्वतंत्र कराया। आज स्वतंत्र भारत में सांस लेते हुए हमें इन अमर शहीदों के बलिदान और जज्बे को हमेशा नमन करना चाहिए।

इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। श्रोताओं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल ए कव्वाली। सबसे पहले आइए सुनते हैं मुगले आजम फिल्म की कव्वाली लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों के स्वर में। शकील बदायूनी की लिखी कव्वाली को संगीत दिया है नौशाद ने।

अभी आप सुन रहे थे सलमा आगा, आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में हसन कमाल की लिखी कव्वाली निकाह फिल्म से। संगीत था रवि का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अधिकार फिल्म से कव्वाली। आवाज है मोहम्मद रफी की। इसे लिखा है महेश पंत ने, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

तू पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अमर अकबर एंथनी फिल्म से कव्वाली, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

अमर अकबर एंथनी फिल्म की इस कव्वाली के साथ ही कार्यक्रम महफिल ए कव्वाली यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

अभी आपने सुना अनामिका फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में अनीता फिल्म का गीत। इसे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उपप्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नागरिकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंत में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोलितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अनीता फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी के इस विजनरी सजेशंस को एक अक्षर में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडिव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उच्च कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम ये सब चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: आयन और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन नीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के खंभे में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन नीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने की सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन नीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज़े डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर उन सुक यूल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के लिए 30 साल कैद की सजा सुनाई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्जान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद बढ़ाने के लिए काम किया है और ये सभी शोबों में नुमाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों को सरगर्म ताउन दे रही है जो ख्वातीन को माली एतबार से आज़ाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत की नारी शक्ति के साइंस, खला और इख्तिरात जैसे शोबों में नुमाया होने वाले असरात पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जनाब शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों के साथ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाकाबिले तस्खीर कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड की तामीर की जाए। वजीर मौसूफ ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी और जदीद तरीन निगरानी के निजामों को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, सेहत की देखभाल से मुतालिक खिदमात, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और तमाम दीगर जरूरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खातिर खा इंतजाम किए जाएं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरलों ने मीटिंग में शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को खत्म होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूरोप के 2 मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के पहले मरहले के तहत 14 जून को फ्रांस के शहर नीस का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का यह दौरा खसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस साल फरवरी में फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को खसूसी आलमी कलीदी शराकत दारी का दर्जा अता करने के बाद सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ जनाब मोदी की यह पहली दो तरफा मुलाकात होगी। जनाब मोदी नीस से स्लोवाकिया रवाना होंगे। इसके बाद वजीर आजम G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस के इवान वापस लौटेंगे जहां भारत आलमी खित्ते जुनूब की अहम आवाज के तौर पर शिरकत करेगा। मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर कोलकाता में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मीडिया को आज ये इत्तला दी। जनाब अधिकारी ने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीनें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें

0: मुनासिफाना कीमत देकर मगरबी बंगाल की हुकूमत आम आदमी की ज़मीनें ले रही है और इन ज़मीनों को BSF के हवाले कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि ज़मीन की मुंतकली का ये अमल जारी है और इस प्रोजेक्ट को कौमी सलामती का एक मामला करार दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरहदों पर बाड़ लगाने का काम इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि दरअंदाजी को कतई रोका जा सके।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: मरकजी काबीना के सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका तरफैन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट

0: टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका तरफेन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट, शफाफ और महफूज दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारें और जिला इंतजामिया नीट के दोबारा इम्तिहान को बिला रुकावट मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से गहरे तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे कबल इस माह के आगाज में जनाब सोमनाथन मरकजी हुकूमत और मुतालिका एजेंसियों के सेक्रेटरियों के साथ इंतजाम का जायजा ले चुके हैं। इधर NTA ने इस माह की 21 तारीख को होने वाले NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान की विंडो में 15 मिनट का इजाफा किया है और इसे 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये आकाशवाणी है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज़े डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलफ हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने एक बार फिर शहरी जहाजरानी के खिलाफ इंतहाई मोहलिक कुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तशवीश से उन्हें वाकिफ कराया। वजारत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिले है और एक मुश्किल वक्त में एक हसास इलाके में बैनुल अक्वामी सरहदों में कारोबार के तहफ्फुज़, सलामती और इस्तेहकाम को कमजोर करती है। अमरीका के शाज़े डिफियर से दरख्वास्त की गई कि वह अपने हुक्काम को भारत की सख्त तशवीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खित्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेज शहरियों की जिंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी जरूरी इकदाम करें। यह दूसरी मरतबा है कि अमरीकी LG को वजारत में तलब किया गया। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तिलात मिली थी कि वो लापता हैं, तस्दीक हो गई है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर इल्जाम लगाया कि वह आबनाए हुरमुस से रवाना होने वाले भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाकयात को कतई तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया। उनका यह बयान भारत की जानिब से अमरीका के शॉज़े डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फौजों के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। इससे कबल दिन में ईरान ने कमर्शल जहाजों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की थी और इन्हें हलाकत खेज करार दिया था और वॉशिंगटन पर लाकानूनियत पर मबनी कार्रवाई में मुलविस होने का इल्जाम लगाया था, जिससे आलमी अमन और समुद्री सरहद की सलामती को खतरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताजियत का इजहार किया और बैनुल अक्वामी बिरादरी से जोर देकर कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सिफारती कोशिशें आज भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा माहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बराह रास्त तरदीद है जिसमें उन्होंने इससे पहले कहा था कि कुछ ही दिन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी कतई माहदे के बारे में या दस्तखत किए जाने की कोई तकरीब मुनद होने के बारे में बात करना कबल अज वक्त है। अलबत्ता ने इस बात की तस्दीक की कि मुजाकरात के ज्यादातर मतन को मुसविदे की शक्ल दे दी गई है। मजीद तफसील मगरबी एशिया के हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी एशिया के लिए ये नई सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। मुजवजा हमले रोक देने के सदर ट्रंप के ऐलान के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि खित्ते में वसी तर तनाजे को टाला जा सकता है। हालांकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि किसी भी हतमी समझौते को मंजूरी नहीं दी गई है और कई अहम उमूर हल तलब हैं। अहम नुकात में ईरान का एटमी प्रोग्राम, मुंजमिद इसासों को जारी करना और आबनाए हुरमुज के तरफ मुस्तकबिल में सिक्योरिटी बंदोबस्त शामिल हैं। इस सूरत हाल में जबकि मुजाकरातकार पसे पर्दा बातचीत में मसरूफ हैं, पूरे खित्ते में फौजी सरगर्मियां भी जारी हैं, जिससे यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोई भी नाखुशगवार वाकया सिफारती पेशरफ्त को नाकाम बना सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: सियोल की एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर यून सुक यूल को आज 30 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें शुमाली कोरिया के साथ कशीदगी बढ़ाने के लिए ड्रोन कार्रवाई का हुक्म देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ के

0: बयान को जायज ठहराने का कसूरवार पाया। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जेल में बंद साबिक सदर को दुश्मन को फायदा पहुंचाने और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात का कसूरवार करार दिया। साबिक वजीर दिफा किम युंग हुन को भी इस कार्रवाई के दौरान उनके रोल की बिना पर 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साबिक सदर यून ने शुमाली कोरिया को मुश्तैल करने के लिए अक्टूबर 2024 में ड्रोन मिशन का हुक्म दिया और मार्शल ला नाफिज करने का पस मंजर तैयार किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी कायद बनाने की हुकूमत की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत अपनी जुर्रतमंदाना पहल की बदौलत उमंगों भरे इकदाम के जरिए आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ यकजा किया गया, जिससे आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भारत की आवाज़ की गूंज सुनाई दी। भारत ने न सिर्फ अपने पुराने ताल्लुकात को मुस्तहकम किया बल्कि नए दोस्त भी बनाए, जिससे मुल्क की खारजा पॉलिसी में एक नई तवानाई पैदा हुई है। जबकि भारत पहले का नज़रिया मुल्क की खारजा पॉलिसी में लगातार सबसे ऊपर रहा। भारत की आलमी मसरूफियात में इंसानी बुनियादों पर मदद और कुदरती आफात के दौरान बचाव कार्रवाइयों ने अहम रोल अदा किया। श्रीलंका के शुमाली साहिल पर समंदरी तूफान दितवा की वजह से नवंबर 2025 में सैकड़ों लोग हलाक हो गए, हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा और अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इस दौरान श्रीलंका के आवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु का आगाज किया, ताकि श्रीलंका को फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और कुदरती आफत के दौरान राहत पहुंचाई जा सके। भारत की खारजा पॉलिसी की अहम झलक उस वक्त नजर आई जब कोविड-19 बहरान के दौरान भारत ने अपनी इंसानियत मरकूज सिफारतकारी के तौर पर वैक्सीन मैत्री पहल का आगाज किया। भारत ने जनवरी 2021 से 99 मुल्कों और अक्वामे मुत्तहिदा के दो इदारों को 30,12,00,000 से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु और वैक्सीन मैत्री जैसी मुतासिर कुन पहल के इम्तिजाज की बदौलत भारत गुज़िश्ता 12 साल में आलमी कायद बनकर उभरा है। इंसानी बुनियाद पर मदद और इलाकाई साझेदारी के तई अहद बस्तगी की जड़ें भारत की वसुधैव कुटुंबकम जैसी सकाफती इकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पीवी सिंधु सिडनी में जारी ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दर्जे की भारतीय खिलाड़ी ने चीनी ताइपी की चिन सू यू को एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शॉज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on Prime Minister's upcoming visit to France and Slovakia, deepening India-European ties. The participants are Manjeev Singh Puri, former ambassador, and Professor Gulshan Sachdeva, international affairs expert. Moderator is Nishit Kumar.
3: Prime Minister Narendra Modi will visit France from 13th to 14th of June and from 16th to 19th of June at the invitation of French President Emmanuel Macron. Prime Minister Modi

अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे कार्यक्रम करंट अफेयर्स। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुन पा रहे हैं आशिकी फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। फरमाइश आप सभी की है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश गुड़िया, ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इसी गीत को सुनना चाहते हैं हरदेव मी का। बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक,

मीका विरक और उनके बहुत सारे साथी। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप, राशि और उनके बहुत सारे साथी। मेन रोड बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से इसी गीत को सुनना चाहा है यश चौहान, अंश, संदीप, माधवी, चौहान परिवार के सभी सदस्यों ने और उनके बहुत सारे साथियों ने। तो आइए सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आशिकी फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में।

तिवरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से फना फिल्म का गीत सुनना चाहा है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम, गजेंद्र सुरेंद्र मोहन सिंह, मनमोहन सिंह मरकाम, मरकाम परिवार के सभी सदस्यों ने और उनके बहुत सारे साथियों ने। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और उनके बहुत सारे साथियों ने इसी गीत को सुनना चाहा है। फरमाइश लिखी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, ततरेंगी से भागवत वर्मा ने। डबवाली से इसी गीत को सुनना चाहते हैं बसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप और उनके बहुत सारे साथी। श्रोताओं, आप सभी ने फना फिल्म के गीत की फरमाइश की है। आवाज है शान और कैलाश खैर की। प्रसून ज्योतिषी के गीत को संगीतिया है जतिन ललित ने।

इस समय आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं संतान फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और उनके बहुत सारे साथियों ने। डबवाली हरियाणा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुनीता, संजय, अनिल, मीनू और उनके बहुत सारे साथी। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बेलई जिला सागर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनरथ, हल्ले, लल्लू, ऋषि रैकवार, मुकेश ठाकुर, नरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, कल्लू महाराज पानवाले और उनके बहुत सारे साथी। छत्तीसगढ़ ग्राम दतरंगी से फरमाइश लिख भेजी है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने और उनके बहुत सारे साथियों ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहां और उनके बहुत सारे साथी। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं संतान फिल्म का ये युगल गीत।

विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू सईद, वसीम, वली उल्लाह नूरजहां और उनके बहुत सारे साथियों ने बुलंद शहर से इसी गीत को सुनना चाहा है। बद्रू वली अंसारी, फरजू वली अंसारी, अर्जी वली अंसारी ने। लुधियाना पंजाब से इसी गीत को सुनना चाहा है अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर और उनके बहुत सारे साथियों ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने इसी गीत को सुनना चाहा है। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता और उनके बहुत सारे साथियों ने। पटेल नगर मलोट से फरमाइश लिखी है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया ने। गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू, जाजोरिया परिवार के सभी सदस्यों ने और उनके बहुत सारे साथियों ने। फाजिल का पंजाब से इसी गीत को सुनना चाहते हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा।

जाजोरिया ने गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू, जाजोरिया परिवार के सभी सदस्यों ने और उनके बहुत सारे साथियों ने। फाजिल्का पंजाब से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बूक, खेड़ा परिवार के सभी सदस्य और उनके बहुत सारे साथी। मनसा मंदिर लोनी से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ईशान हुसैन, मुताहिर हुसैन, आयत और हमजा। कृष्णानगर काछीपुरा थाना सदर बाजार जिला आगरा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। उषा कुशवाह, सोनू कुशवाह, बाबूलाल और उनके बहुत सारे साथी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से इसी गीत को सुनना चाहते हैं। नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मिलिंद दोवेश, अंबिका, योगिता, नेताम परिवार के सभी सदस्य और उनके बहुत सारे साथी। तो आइए सुनते हैं फकीरा फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

फकीरा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रमेश तागड़े का वॉयलिन पर बजाया राग बिहाग।

0: अभी आप सुन रहे थे रमेश तागड़े का वायलिन पर बजाया राग बिहाग। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी के इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has